फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Oh, ये है विविध भारती।
0: प्रस्तुत है वंदन वार।

आज का चिंतन। संत कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अर्थ है बड़ी बड़ी पुस्तकें किताबें पढ़कर दुनिया में कितने ही लोग चले गए, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। वास्तव में ज्ञानी वही है जो प्रेम, सौहार्द, मानवता, परोपकार की भाषा पढ़ सके। अप्रस्तुत भक्ति संगीत।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 305। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 8। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। भूले बिसरे गीत 7 से हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 से 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार। आज का सुबह का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा 9:30 पर पार्श्व गायिका डॉक्टर भूपेन हजारिका, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का है, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। सुबह 10 पिटारा में सेहतनामा पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की है। सुबह रंग तरंग 12:05 पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर, 2 त्रिवेणी। पर सदाबहार नगमे, 3 सखी सहेली, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे अभिनेता विनीत रैना स्नेहा शर्मा की बातचीत सुनेगा, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर संध्या रंजन भक्ति संगीत का कार्यक्रम है। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम, आपको फिर से बता दें श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा सुनिएगा किराना घराना भाग 8। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस, 8 हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज सुनिएगा झलक की नया तजुर्बा, लेखन हरीश दीक्षित का, निर्देशन अनुराधा शर्मा का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर सुने पार्श्व गायिका आशा भोसले पर केंद्रित होगा, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। 10 छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान भाग 305।

अपने पुत्र प्रहस्त से नीति की बात तथा श्री राम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्त को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्रीराम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं। अनंत आकाश पर बिखरे तारों से मानो रात्रि रूपी सुंदरी ने अपना श्रृंगार किया है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गाना, आज आपने सुना भाग 305।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, किराना घराने में प्रस्तुतीकरण को लेकर जो बातें बताई गई हैं, उसकी जो विशेषता है वो कौन सी है?
2: बहुत सारी विशेषता है, अभी तक हमने चर्चा तो की है।
1: जी जी जी।
2: विलंबित लय, स्वर प्रधानता, मिंड गायकी,
1: सूक्ष्म
2: लगाव। अभी जो महत्वपूर्ण जो है, हाँ, जो सब घराने में रहते हैं लेकिन हमारे घर में भी, घराने में भी है, वो राग का स्वरूप, उसका व्याकरण,
1: हाँ,
2: उसकी शुद्धता, उसके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए भी हम जो राग चुनते हैं वो थाट वाले राग चुनते हैं ज्यादातर। और राग के मूल स्वरूप का संरक्षण तो हमें करना है। ज्यादातर थाट प्रधान राग अथवा संपूर्ण राग लेने की जो प्रथा है वो हमारे घराने में है।
1: अच्छा।
2: प्रत्येक राग को उसके मूल स्वरूप और पारंपरिक पहचान के साथ प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया जाता है।
1: जी जी।
2: राग के स्वरों पर, चलन पर, भाव पर अनावश्यक जो परिवर्तन हम नहीं करते।
1: अच्छा।
2: यानी कभी कभी क्या होता है, एक एक स्वर राग में अगर हमने थोड़ा ज्यादा लगाया, थोड़ा कम लगाया, अभी देखो तोड़ी और मुल्तानी दोनों का स्वर एक ही है।
1: अच्छा।
2: लेकिन उसका जो मध्यम है मुल्तानी का, पंचम है, पंचम पर लगाव है, ठहराव है, इसके ऊपर ही इसको हम अलग करते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये जो है, ये व्याकरण जो है पूरा पालन करना इस घराने की गायकी में, राग के आरोह अवरोह, वादी संवादी, विशिष्ट पकड़ तथा स्वर प्रयोग,
1: जी जी जी,
2: इन सब चीजों को नियमों के अत्यंत सावधानी से हमें पालन करना पड़ता है।
1: अच्छा।
2: और यही राग की शास्त्रीय शुद्धता को बनाए रखता है। शास्त्रीय शुद्धता को भी रखना, उसका भाव भी रखना।
1: अच्छा।
2: ये सब बातें जो है उसका बहुत ही, इट इज लाइक अ मेडिटेशन, अध्यात्म ही है।
1: जी, जी, जी।
2: प्रत्येक स्वर का एक उचित स्थान होता है। हर स्वर को उसके निश्चित स्थान और उचित महत्व के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
1: जी, जी।
2: किसी भी स्वर का प्रयोग राग की प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब राग की जो पहचान है उसे जी भी हमें स्पष्ट करना है।
1: जी, जी।
2: विलंबित आलाप, मिंड और सूक्ष्म स्वर लगाव के माध्यम से राग का स्वरूप धीरे धीरे विकसित किया जाता है, जिससे राग की पहचान हो जाती है। और शुद्धता और भाव का संतुलन,
1: जी,
2: किराना घराना केवल तकनीक की शुद्धता पर ही नहीं बल्कि राग के भाव और रस की अभिव्यक्ति पर भी समान रूप से बल देता है।
1: जी जी।
2: इसलिए गायकी शास्त्रीय होने के साथ साथ भावपूर्ण भी होती है।
1: वाह।
2: और भी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हर आदमी का जो स्वभाव होता है उनका असर भी वहाँ पड़ता है। इसीलिए हमारी गुरुजी हमें हमेशा बोलती थी कि स्वभाव में,
1: हाँ,
2: जो ट्रांसपेरेंसी आप रखते, पारदर्शकता रखते,
1: हाँ,
2: वही आपका गाना
1: आपके
2: है,
1: गायन में भी वो दिखती,
2: हाँ, ये शुद्धता होनी है।
1: वा, वा।
2: और एक प्रामाणिक ये
1: क्या बात?
2: गहन विकास का महत्व, हाँ, यानी राग के स्वरूप और व्याकरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए,
1: हाँ,
2: नियमित स्वर साधना, श्रुति की समझ और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन यहाँ पे अत्यंत महत्व और आवश्यक माना गया।
1: सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी बात है।
2: और प्रचलित राग जो किराना घराने में हमेशा गाते हैं, यमन, तोड़ी, दरबारी कानरा, भैरव, मुल्तानी, पुरिया, ललत, बागेश्री, मियाँ की मल्हार, शुद्ध कल्याण, पुरिया धनश्री, ऐसे सारे राग हैं जो संपूर्ण राग है, जहाँ सब गाने के लिए अच्छा मिलता है, उसका व्याकरण का संभाल करने के लिए बहुत ही वाव है, ऐसे राग हम चुनते हैं। इसलिए मुझे लगता है यहाँ अगर मैं थोड़ा सा मुल्तानी गा के सुनाऊँ तो
1: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है।
2: मुल्तानी को हम पुरुष राग कहते हैं, उसके स्वर में जो पौरुष है,
1: हाँ, हाँ,
2: और उनका जैसा है उसके चलन में ही मधुवंती जाता है, वो थोड़ा नजाकतदार राग है।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शकुंतला जी, राग मुल्तानी पर आधारित जो फिल्मी गीत इस वक्त जहन में आ रहा है वो शबाब फिल्म का गाना है।
1: वाह वाह,
0: दया करो गिरधर गोपाल। उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज है, आइए सुनते हैं।
1: वाह, आमिर खान का नाम आया तो कहती हूँ
0: जी,
1: ये जो चीज मैंने गाई हूँ वो हमारे गुरुजी पंडित प्रसाद सावकर के पास
0: जी,
1: कुछ
0: जी, जी,
1: साल में हाँ। सीखी हूँ, उन्होंने दी है। वो कहते थे जब भी तुम्हारा रियाज कम होता है तब ऐसी चीज गाने का, तो आवाज की फिरक
0: अच्छा
1: बढ़ती है।
0: ओहो,

0: खास साहब का कुछ राग ही ऐसे है जिसमें उनकी फिरक और उनका जो वजन ये समझ में आता
1: जी,
0: है।
1: जी, जी।
0: ये खास साहब का, चलो सुनेंगे।
1: क्या बात है, आइए सुनते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विशाल परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। रक्षा खरीद परिषद में सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु तोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्धा रडार की भी खरीद तथा मैरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजोशियान की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागवी ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। 6G नेटवर्क के विकास और वैश्विक पहल में भारत अब अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटकिनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में शामिल हैं। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबले में अपनी चुनौती रखेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। भारत की पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में स्लोवाकिया से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: A major highlight of PM's visit will be the dedication of three key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister will also flag off the freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Mumakam and New JNPT, along with a new passenger train service between Tandoor and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail network. In addition, Mr. Modi will also lay the foundation stone for three railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees and three national highway projects costing around 1,780 crore rupees to ease the cognition and boost connectivity across Gujarat and Uttar Pradesh. He will also launch various civic and infrastructure projects of Gujarat government worth 2,600 crore, including a 110 megawatt floating solar plant at Kadana Dam and inauguration of PMAY housing units. Later, the PM will also visit Navsari to inaugurate the BJP's new AI-enabled high-tech office. Aparna Khon, Akashwani News, Ahmedabad.
2: In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest, GFF 2026, in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर, 35,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। धार के आदिवासी अंचल को मिलेगी रेल की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात से छोटा उदयपुर धार परियोजना का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दुबई दौरा, आज यूएई के निवेशकों और उद्योगपतियों से करेंगे 1-to-1 बैठकें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 का देंगे न्योता। और 11 सितंबर तक रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में वे 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 अहम खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसके साथ यह परियोजना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा वे कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत करेंगे और जोबट टांडा रोड नई रेल लाइन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 3 रेलवे और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में वे मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे, जहां एआई, क्वांटम तकनीकी, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। वहीं धार जिले के आदिवासी अंचल में भी अब रेल सुविधा पहुंचने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात से ही छोटा उदयपुर धार परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित टांडा रोड रेलवे स्टेशन से नई टांडा रोड प्रतापनगर रेल सेवा की शुरुआत होगी। श्री मोदी इस दौरान रतलाम से बड़ौदा फोर लाइनिंग परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि अब टांडा रोड तक रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद आदिवासी क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
1: धार जिले में आदिवासी टांडा क्षेत्र में पहली बार रेलवे लाइन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और माननीय रेल मंत्री द्वारा ये शुभारंभ होगा। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी अंचल में पहली बार रेल हमारे यहाँ आएगी। हमारे आदिवासी भाई बहन, किसान, महिलाएं, युवा पहली बार ट्रेन देखेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई यात्रा के तीसरे दिन यानी आज 8 सितंबर को प्रदेश में निवेश लाने के लिए कई अहम बैठकें करेंगे। वे यूएई के बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री शारजा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के साथ बैठक भी करेंगे और निवेशकों को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन, शहरी विकास, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं कल डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री, यूएई और रूस के वरिष्ठ नेताओं के साथ विनिर्माण, फार्मा, पर्यटन, लॉजिस्टिक, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की।
2: वैश्विक निवेश, नवाचार के केंद्र दुबई के इस मंच पर जब वैश्विक साझेदारी, रणनीतिक आर्थिक सहयोग, मजबूत और समृद्ध भविष्य का साझा रोडमैप का एक तरह से प्लेटफॉर्म है। मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से है जिनकी अपनी स्वयं की पॉलिसियों के बलबूते पर, पारदर्शी नीतियों के आधार पर, आकर्षक योजनाओं के कारण से और खास करके एनर्जी और अन्य कारण से मध्य प्रदेश को सुगमता पूर्वक अवसर उपलब्ध कराता है, जिसके आधार पर कई प्रकार के व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयां मिलती
0: है। वहीं प्रदेश में पर्यटन और होटल की कारोबार की संभावनाओं को देखने के लिए यूएई का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रदेश का दौरा करेगा। यूएई की ओर से होटल और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में निवेश के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि प्रदेश में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और होटल और होमस्टे के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच मध्य प्रदेश और यूएई हवाई सेवा शुरू करने को सहयोग पर भी चर्चा हुई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बंडा और बिनायका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगहों से कुल 225.12 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की गई है। कार्रवाई में दोनों थाना क्षेत्रों के कई गांवों से शराब बेचने और रखने के आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में आज कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनिट का उद्घाटन करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मेडिकल कॉलेज के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, डॉक्टर और अधिकारी शामिल होंगे। नई यूनिट शुरू होने से कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए बेहतर और व्यवस्थित सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम समय पर होना शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के लिए जरूरी है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि इस सत्र से विद्यार्थियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के जरिए दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परीक्षा सिर्फ ज्ञान परखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा, कौशल और रचनात्मकता का भी आकलन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में प्रदेश के 3 शहरों ने देश में शानदार प्रदर्शन किया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर को दूसरा, जबलपुर को तीसरा और भोपाल को चौथा स्थान मिला है। वहीं भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक 60 को भी बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। सर्वे में धूल नियंत्रण, सड़क सफाई, हरित क्षेत्र बढ़ाने और लोगों की भागीदारी जैसे कामों को आधार बनाया गया। इसके अलावा उज्जैन, सागर और देवास ने भी अपनी अपनी श्रेणी में बेहतर रैंक हासिल की है। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी की विरासत और संस्कृति को करीब से जानने के लिए इंटरप्रिट कंपनी का 20 सदस्यीय विदेशी पर्यटक दल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से आए पर्यटकों ने पुरानी गलियों और ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण किया। उन्होंने बुनकर परिवारों से मिलकर हथकरघे पर चंदेरी साड़ी बनाने की प्रक्रिया भी समझी। दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में सत्य निकेतन में रविवार को हुए इमारत हादसे में प्रदेश के कटनी के 19 वर्षीय छात्र अक्षत यादव की मौत हो गई है। अक्षत दिल्ली में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। हादसे के समय वे इमारत में मौजूद थे और मलबे की चपेट में आ गए। बचाव दल ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में अब तक औसत 31.1 इंच बारिश हो चुकी है, जो बारिश के कुल कोटे का 83.5% है। भोपाल समेत 12 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि 31 जिलों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर तक रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि बाकी जिलों में हल्की बारिश होगी। 12 सितंबर के बाद नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने पर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अहमदाबाद में चल रही विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में उतरेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा की जोड़ी चीन से मुकाबला करेगी। वहीं पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की भिड़ंत स्लोवाकिया से होगी। पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार इराक के खिलाफ उतरेंगे। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी का सामना चेकिया से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के सांदीपनी स्कूल में नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में लगभग 60 विद्यार्थियों ने पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के गणपति बनाने का प्रशिक्षण लिया। झाबुआ के मेघनगर स्थित BO कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। धार जिला मुख्यालय पर भगवान धारनाथ की पारंपरिक और शाही सवारी छबीना धारेश्वर मंदिर से उत्साह के साथ निकाली गई। अशोकनगर जिले में मध्य प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए जल्द ही तहसील स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा के नवीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम के तहत 500 पौधे रोपे गए। सतना के बगहा स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में 8 से 10 सितंबर तक निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। कटनी जिले ने सत्र 2026-27 में अपनी सभी 7 शासकीय ITI की 788 सीटों पर 100% दाखिला पूरा करके प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। डिंडोरी के बजाक तहसील कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेहत की जांच के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मंडला में आगामी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान, पौधरोपण और खेलकूद गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और बैतूल कलेक्टर ने आदिवासी उत्कृष्ट बालक छात्रावास परिसर के पुराने भवन को एक आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर,

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन,
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

नवरात्रि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। जीएस नेपाली ने इस गीत को लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी। अब प्रस्तुत है बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, तलत महमूद की, शैलेंद्र शब्दकार हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सविता सिंह का नमस्कार। आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए इस गीत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। तुमसा नहीं देखा इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाँ।

0: ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में एसएच बिहारी की बोल थी ओपी नैयर की तर्स हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती से
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
4: चिट्ठी ना कोई संदेह
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं

आशा भोसले के आवाज़ की इस खूबसूरती को कौन नहीं जानता। उन्होंने सिर्फ एक तरह के गाने नहीं गाए, उनकी आवाज़ में शरारत, शोखी, रोमांस, दर्द, मस्ती और नज़ाकत की एक अनोखी अदा है। आज उनके जन्मतिथि पर उन्हें सादर नमन। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अभी

आपको फिर से बता दें, वक्त फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें थी, शाहिद लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत था। ये गीत जो आप सुन रहे हैं इसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। यादों की बारात फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं।

0: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। यादों की बारात फिल्म का ये गीत आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। और इसी गीत के साथ ही आज का हमें राहे प्यार के कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साड़न, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री

0: गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए एआई सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजोश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
9: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
11: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हथियारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, एमसीडी अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satyaniketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, this mega project has now been fully completed and will be formally dedicated to the nation by the Prime Minister.
13: Dedicated freight corridor.
14: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation by Prime Minister tomorrow. In 2014, the Prime Minister took up this project and resolved all the issues and challenges associated with it. Today, the project has finally been completed.
15: Jitni bhi usme problems thi, unko solve kiya aur ab complete hua.
12: Our correspondent has filed this report.
0: A major highlight of PM's visit will be the dedication of three key sections of Western Dedicated Freight

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। नमस्कार आप सभी को सविता सिंह का।

0: बाजीराव मस्ताने फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज श्रेया घोषाल की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा ने इस गीत को लिखा था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है।

सोना महापात्रा और रविंद्र उपाध्याय की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था और तलाश फिल्म का गीत आपने अभी सुना। समारोह फिल्म का ये गीत है के लक्ष्मी मोहन की आवाजें हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। इस कार्यक्रम में अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में लापता लेडीज़ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रशांत पांडे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत की धुन बनाई थी। महान पार्श्व गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका का आज जन्म दिवस जयंती है। महान गायक, गीतकार, संगीतकार और असम की खूबसूरत सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें, सुनना न भूलिएगा आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर सुनेगा, जो केंद्रित है महान गायक भूपेन हजारिका पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: का सफर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
2: सुन विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है
1: जी।
2: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
1: जी,
2: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी। हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी, जेल की कहानी से।
1: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अब लेते हैं एक ब्रेक।

0: हिचकी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे राजशेखर ने से लिखा था और जैस्लिन रॉयल का संगीत था। आज राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, हर साल 8 सितंबर को। हम सभी जानते हैं साक्षरता का सामान्य अर्थ पढ़ना लिखना और जानना। पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति सशक्त, आत्मनिर्भर और समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने और बहुत सारे कार्य करने योग्य बन जाता है। लेकिन सही अर्थों में जानना तब होता है जब हम ज्ञान और विवेक यानी सही गलत की हमें पहचान होती है। जो लोग साक्षर नहीं हैं उन्हें जीवन में कई तरह के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है और आजकल तो पढ़ने लिखने के साथ साथ संवाद करना, टेक्नोलॉजी और तमाम उपकरणों का ज्ञान भी साक्षरता में शामिल हो गया है। यानी सबका ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितने की पढ़ाई लिखाई। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पढ़ना लिखना तो सामान्य प्रक्रिया है जो सभी के लिए जरूरी है और जानने से तात्पर्य विवेक होना, ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना, उचित अनुचित की पहचान होना, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य विशेष रूप से उन लोगों को साक्षर बनाना है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या उनकी पढ़ाई में कोई आर्थिक परेशानी आई या कोई और परेशानी आई। उन सबकी हमें मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का यह भी उद्देश्य है कि देश के कोने कोने में हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने और समझने का अवसर प्राप्त कराया जाए, महिलाओं और वंचित वर्गों को साक्षर बनाकर आत्मनिर्भर बनाना, ये भी एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों की येन केन प्रकारेण मदद करें जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। और आज की ज़रूरत है मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और डिजिटल भुगतान, और ये सभी आज की ज़रूरत है। इन सब जैसी ज़रूरी चीज़ों को बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है और इस दृष्टिकोण से ताकि उनमें हीन भावना ना आए। ऐसे भाव से हमें सबको बताना चाहिए और जिस भी प्रकार से मदद की जा सके करना चाहिए।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

थ्रीडर्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था। साथियों, साक्षरता का अर्थ केवल ये नहीं कि अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लें या पढ़ाई कर लें, किताबें पढ़ लें, उसे अपने जीवन में सही मायने में उतारना ही साक्षरता सही मायने में सिद्ध होता है।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज की। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी गोपी सुंदर और शिप्पा दा की, श्रीप्रदा की आवाजें थी, और अमिताभ भट्टाचार्य के ये बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। अपनी जादुई और बहुमुखी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली संगीत साम्राज्ञी पार्श्व गायिका आशा भोसले का आज जन्मदिन है। सुरों की मल्लिका, जिन्होंने हर भाव को संगीत में व्यक्त किया, एक ऐसी आवाज जिसने 7 दशकों तक संगीत को संवारा, उनके जन्म दिवस पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें कि आशा भोसले के बारे में विस्तार से जानकारी सुनेगा रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आशा भोसले पर। सुनना न भूलिएगा। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं बेगम जान फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है कौसर मुनीर के बोल हैं अनु मलिक का संगीत।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। जब उन्होंने ये गीत गाया तो उस समय उनकी उम्र यानी कि उस उम्र में ये गाना बहुत ही खास है, क्योंकि इस गाने में जिस संजीदगी और सुरीली आवाज के साथ इसे बड़ी ही गहरे और भावपूर्ण से इस गीत को गाया है। इस गीत ने सभी दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये गीत दर्द और अकेलेपन को बयां करता है और ये बहुत ही सुंदर सा गीत अभी आपने सुना। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे फनकार की बातें जिनकी आवाज, जिनका स्वर सुनकर समय जैसे थम जाता है और हम कह

एक ऐसी आवाज जो मन की वादियों को एक अजीब सा सुकून देती है, एक ऐसी आवाज जो सारी दुनिया की आवाज है, जो अपने लोक रंग की वजह से दुनिया भर में बहुत अनूठी मानी

आज के फनकार कार्यक्रम आज डॉक्टर भूपेन हजारिका पर केंद्रित है। डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था सदिया असम में। उनके पिता नीलकांत हजारिका और माता शांति प्रिय हजारिका थीं। बचपन से ही उनकी मां ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। मां की लोरियों के साथ धीरे धीरे वो असम के लोक संगीत से परिचित हुए। सन 1929 में उनके पिता गुवाहाटी में आकर रहने लगे और सन 1932 में डॉक्टर भूपेन हजारिका का परिवार धुबरी आ गया। इसके बाद ये सभी लोग तेजपुर आ गए। तेजपुर में ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद राभा ने भूपेन हजारिका की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत सिखाना शुरू किया। सन 1936 में भूपेन हजारिका ने अपना पहला गाना कोलकाता में रिकॉर्ड किया।

0: जिसकी सदा है गूंज रही है, जिसकी सदा है किसकी सदा है।
1: इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में और उसके बाद धुबरी के सरकारी हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। सन 1942 में उन्होंने कॉटन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, बाद में बीए और एमए किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। थोड़े दिनों तक डॉक्टर भूपेन हजारिका गुवाहाटी के आकाशवाणी केंद्र में काम करते रहे। जल्दी ही उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप मिल गई और वो पहुंच गए न्यूयॉर्क सन 1949 में। सन 1952 में डॉक्टर हजारिका ने अपनी पीएचडी पूरी की। अमेरिका के दिनों में भूपेन हजारिका पर वहां की संगीत का खास प्रभाव पड़ा। ये वो दिन थे जब अश्वेत संगीतकार पॉल रॉबसन अमेरिकी श्रमिक जनता की आवाज बन चुके थे। पॉल रॉबसन ने मिसिसिपी नदी और उसके आसपास काम कर रहे मजदूरों की व्यथा को जोड़कर अपना एक कालजयी गीत बनाया, ओल्ड मैन रिवर। ये गाना मिसिसिपी नदी और मजदूरों की महागाथा बन गया। डॉक्टर भूपेन हजारिका को फौरन अपनी नदी गंगा याद आई, अपना देश याद आया और बहुत ही भावनात्मक पलों में उन्होंने एक गाना लिखा, गंगा बहती हो क्यों। मूल रूप से इस गाने की रचना बांग्ला में की गई थी। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे हिंदी में तैयार किया और ये रचना आज जनता के दिलों का स्वर है।

डॉक्टर भूपेन हजारिका दरअसल आम जनता की आवाज हैं, खेतों में काम करते मजदूरों की आवाज हैं, चाय के बागानों में चाय की पत्तियां तोड़कर अपनी पीठ पर लटकी टोकरी में जमा करती स्त्रियों की आवाज हैं। वो इस देश की नदियों, इस देश के पहाड़ों, इस देश की हवा, इस देश की संस्कृति, इस देश के नृत्य की आवाज हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका हमारी आवाज है।

1970 में डॉक्टर भूपेन हजारिका की मुलाकात कल्पना लाजमी से हुई। उन दिनों में कल्पना लाजमी एक पल नामक फिल्म बना रही थी। इस फिल्म के संगीत का जिम्मा डॉक्टर हजारिका को दिया गया और इस तरह तैयार हुए कुछ अद्भुत गाने।

0: डॉक्टर हजारिका ने कई फिल्मों में संगीत दिया। सन 1973 में फिल्म आरोप में उन्होंने माया गोविंद के इस गाने को स्वरबद्ध किया था।
1: नहीं।

0: चोला चोला भूख मिटाए दे प्यास हटाए दे खाली है पेट का झोला वो झोला झोला वो झोला है याना याना याना।
1: सन 1997 अमोल पालेकर की फिल्म दरमिया। डॉक्टर हजारिका के फिल्मी गीत जितने लोकप्रिय हुए उससे भी ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं असम और बंगाल के इलाके में उनके गैर फिल्मी गीत और उनके

डॉक्टर हजारिका को सन 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1977 में पद्मश्री मिला। सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1992 में वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। संगीत नाटक अकादमी ने साल 2008 में उन्हें अपनी फेलोशिप से नवाजा था। डॉक्टर हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभा। वे शारीरिक रूप से भले ही इस संसार से कूच कर गए 5 नवंबर 2011 को, लेकिन उनका स्वर, उनकी लेखनी हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मंडला जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। यहां देश विदेश से आने वाले पर्यटकों से बेहतर संवाद के लिए 59 नेचर गाइड्स को अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह कान्हा में वन रक्षकों और मैदानी अमले के लिए वन्यजीव फोटोग्राफी और फील्ड दस्तावेजीकरण पर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस कार्यशाला में मोबाइल कैमरा सेटिंग, जियो टैगिंग और वन्यजीवों की तस्वीरों का रिकॉर्ड रखने की जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंत में वन रक्षकों की भूमिका पर बनी लघु डॉक्यूमेंट्री द लास्ट कीपर्स भी दिखाई गई। मौसम की अगर बात करें तो इस साल मंडला जिले में मानसून ने देर से दस्तक दी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार जिले में करीब 22% कम बारिश हुई है। बारिश के बाद अब त्योहारों की बात करते हैं। मंडला जिले में रक्षाबंधन का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर जिले भर के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और दिन भर पूजा पाठ और भजन कीर्तन होते रहे। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के समय मंदिरों में घंटियां बजी और जयकारे लगाए गए। कई जगह झांकियां सजाई गई और बच्चों ने राधा कृष्ण और बाल गोपाल का रूप धरकर लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा सावन के आखिरी सोमवार को महिष्मति घाट से कांवड़ यात्रा निकाली गई। कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने मां नर्मदा का पूजन कर जिलेवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शिक्षा से जुड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक दिवस पर मंडला के शिक्षक सदन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण से की गई। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। इस मौके पर परीक्षा व्यवस्था में बेहतर योगदान के लिए बोर्ड परीक्षा प्रभारी महेंद्र श्रीवास को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन जिला कैरियर काउंसलर अखिलेश उपाध्याय ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में ही मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। कक्षा 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी गई। मंडला जिले के 1,611 विद्यार्थियों के बैंक खातों में यह राशि भेजी गई है। मंडला की एक 12 साल की छात्रा ने अपनी मेहनत से जिले का नाम रोशन किया है। बीजा डांडी विकास खंड की पीहू परस्ते ने कक्षा 7वीं में 94.29% अंक हासिल कर अपनी कक्षा में पहला स्थान पाया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बरबटी की छात्रा पीहू को प्रतिभावान बच्चों में शामिल किया गया है। 26 अगस्त को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मंडला जिले में पहल की गई है। रानी दुर्गावती महाविद्यालय में माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन बीते दिनों किया गया। विद्यार्थियों को प्राकृतिक मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मंडला जिला अस्पताल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के आकलन में 86.17% अंक हासिल किए हैं। विशेषज्ञ टीम ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, संक्रमण नियंत्रण, जैविक कचरा प्रबंधन और मरीजों की सुविधाओं का निरीक्षण किया था। वहीं बारिश में जल और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। साफ पानी पीने और हाथ धोने के साथ घर के आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की गई है। बुखार या उल्टी दस्त होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने को कहा गया है। जिले में 35वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल की

0: वाहन शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सेनानी राजेश रघुवंशी ने सरकारी वाहनों की स्थिति, साफ सफाई, रख रखाव और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अब पंचायत उपचुनाव से जुड़ी खबर। मंडला जिले की 9 जनपद पंचायतों में खाली सरपंच और पंच पदों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। उम्मीदवार 8 से 15 सितंबर तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कर सकेंगे। जिले में सरपंच के 5 और पंच के 71 पद खाली हैं। नामांकन संबंधित जनपद पंचायत कार्यालयों में लिए जाएंगे। वहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस आयोजन में मंत्री संपतिया उइके ने खिलाड़ियों और युवाओं का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कराते खिलाड़ी तुषार चौधरी और राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी रघुवेंद्र सयाम और तनु यादव ने भी युवाओं को प्रेरित किया। और आखिर में स्वतंत्रता दिवस की खबर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीते दिनों मंडला पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के नेतृत्व में रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। मंडला जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मंडला जिले की चिट्ठी, आलेख था शशांक चौबे का, वाचन स्वर अभिषेक खटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: देगा आपकी दिन की काम करने के लिए
3: ऊर्जा भी देगा,
2: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
3: वो भी मौसम के हिसाब
2: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है। और हम आजकल ज्यादा कर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो दूध, पनीर, इसमें से आ जाता है। और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी, फिश, चिकन, इसमें से आपको मिल जाता है। और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादा कर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या है, उस पे ये निर्भर करता है
3: जी। और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाले, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
2: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
3: जवाहर भाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
4: ये समझो और समझो।

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा अच्छा ओके।
1: अब ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको भूला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाले सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल, पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते हैं कि ये दो ये नहीं दो, ये सही है ये गलत है। इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपकी बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
0: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
1: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है. जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी. ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं
0: जी.
1: तो सबसे पहले आपके खाने के लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो. जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा. मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे. आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है. जैसे सब्जियां हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में हम उसको जो पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है. जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा.
0: अच्छा.
1: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है. जैसे अभी कंठोला आ गया, आप तो कंठोला आपको अभी ही मिलेगा. आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा. आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए. तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पर खानी चाहिए. हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में. नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीजें अलग अलग है.
0: जी, जी.
1: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं.
0: जी.
1: नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं. जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका. उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं. फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं. इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गए. अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है. वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है. वैसे ही जो कद्दू होता है, उसके बीज होते हैं पंपकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं. उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है. तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है. इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
0: बढ़ जाता है.
1: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिस खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया. और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं. ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल.
0: जी जी.
1: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए. ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे.
0: जी बिल्कुल. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं. कौन सा गाना?
1: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है. जो मौसम की जो सब्जियां है, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है. तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए.
0: जी. उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना.

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहां पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपकी सही विटामिंस मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना है, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
0: जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती है, खास तौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
0: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
1: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है, और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है। मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो उसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
1: जी,
0: कौन सा?
1: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई चक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
0: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाते हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: सर, ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को आईबीएस आईबीडी ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे संतुलन पे आपके काम पे सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है।
0: जी,
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा,
1: दूसरी चीज आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
0: जी, ब्लोटिंग होने
1: लगती बहुत ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है, तो आपके शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुयम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर

0: ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
1: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है आईबीएस, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, आईबीएस, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाए और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: आईबीएस और आईबीडी थोड़ा एडवांस लेवल की पेट की इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है। आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो
1: जी।
0: और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
0: बहुत ज्यादा, बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
1: डिप्रेशन
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते, और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितनी विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई मुझे हर दिन का एक फल चाहिए, और ये मैंने किया हुआ है, कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: आप ही बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
2: चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम का पिया पहले जैसे।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसकी वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपके थाली में कितने रंग हैं, कितने तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
0: जी बिल्कुल,
1: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं,
0: जी जी जी
1: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गरम मसाले का पानी हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
1: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं।
0: बिल्कुल, एक पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल के,
1: हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
0: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है, लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर, लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है, हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा, तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
1: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं मगर उनकी बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
0: जी जी,
1: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
0: जी बिल्कुल।
1: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद ट्रैवल ये सब थोड़ा सा कम हो गया है, जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1,000-2,000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी
1: आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं,
0: जी
1: बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी
0: जी
1: होता है।
0: जी
1: तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
0: जी एक गाना सुने,
1: जी
0: कौन सा
1: आप ही बता दीजिए कोई गाना।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करिए या विटामिन सी की बात करिए, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से। तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला ले लो, अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है।

0: बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है. अमरूद का मैंने आपको बता दिया. तो
1: करौंदा,
0: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं. जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है. आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर
1: जी,
0: सकते हो.
1: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किस में होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जितने हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाएं, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है. मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए. उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए. चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं. बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो.
1: जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है?
0: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है. हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है. लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं. इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार. इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते. अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है. जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है. हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है. बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें, या लूनी नमक, या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें, या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
1: ज्यादा डाल
0: थाली
1: लेते
0: में
1: हैं।
0: ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है, और वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है. तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट. आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की जरूरत है.
1: जी,
0: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया. अगेन, WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच. हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: सब्जी में
0: आराम
1: भी,
0: से.
1: दाल में भी, बिल्कुल।
0: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं.
1: जी बिल्कुल, अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली हमें भी, उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी. इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह. इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले. अब दीजिए इजाजत, नमस्कार.

0: अमर अकबर एंथनी, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये पेशकश आपने अभी सुनी। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

हरिहरन की आवाज में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम रंग तरंग की ये अगली पेशकश।

0: तन्हा दिल इस एल्बम से गीत अभी आपने सुना, शान की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत और म्यूजिक राम संपत का।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

वाला हम सफर हम राज हो ता कयामत जो

हंसी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही यार के हंसते।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: धड़कन, ये था एल्बम का नाम। पिनाज मसानी की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। मुश्ताक अहमद ख्याल ने इसे लिखा।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूँ या दिल जानता है।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

सोनू निगम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जान एल्बम से, फैज अनवर ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, लीजिए सुनते हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कंचन मनोहर उदास और आनंद की आवाजों में ये गीत कुर्बानी फिल्म से अभी आपने सुना। इंदिवर ने इसे संगीत दिया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंज

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो मेरे माउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

यादों की बारात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजनू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। आज जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिवस है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें सादर नमन।

0: आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा ए आर रहमान की तर्ज।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रहना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रहना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: बाजीगर फिल्म से ये तभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में रानी मलिक ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: दोस्ताना फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल संपन्न होता है।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों की प्यास से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा उपाध्याय। आज इस सफर में, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आपके गीतों की लिस्ट हमारी लिस्ट से मिलती जुलती है और कितनी मिलती है, और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हो सकता है वो गीत हम इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं पहले से ही, लेकिन शुरुआत करने से पहले इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इबारत नहीं पढ़ी है। इबारत कुछ इस प्रकार थी। शाम की हल्की हवा में उसकी चुनरिया सरक रही थी। वो रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रही थी और वो दूर से उसे चुपचाप देख रहा था। एक दिन उनकी नजरें मिली, वो हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, धीरे बोलिए, कोई सुन न ले। बस वहीं से एक खामोश रिश्ता शुरू हो गया। उसके चेहरे में वो जादू था कि उसे देखते ही दिल बेखुद हो जाता। उसकी आंखों में उसने सपने भी सजा लिए थे। एक दिन बारिश में उसने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर खींच ली। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी तस्वीर इतनी क्यों खींचते हो? वो बोला, तुमसे मिलकर न जाने क्यों तुम्हें तस्वीर में कैद करने का मन करता है। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, ऐसा कभी हुआ नहीं। वो मुस्कुराया, ऐसा कभी हुआ नहीं और शायद अब कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुमसे पहले किसी ने मेरे दिल को इस तरह छुआ ही नहीं। जीते तो है सभी, मगर जिंदगी वही है जो किसी के साथ जीने का ख्वाब दे जाए। और उस शाम बेखुदी में उठे कदम एक ही राह पर आगे बढ़ते चले गए। जी हाँ, तो इबारत हमने पढ़ दी है। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और आप अपने संदेश हमें भेजिए, साथ ही गीतों की लिस्ट भी भेजिए और हमारी बातें भी होती रहेंगी। फिलहाल शुरुआत इस गीत के साथ।

सिलसिला फिल्म से गीत हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में, और शिव हरि का संगीत था। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं जो पढ़ने जा रही हूं, और हाँ सवाल जवाब जरूर होंगे जैसा कि आपने लिखा है, लेकिन पहले इबारत के बारे में जो आपने अच्छे शब्द बहुत ही सुंदर संदेश भेजे हैं वो पढ़ देते हैं। इबारत के बारे में आप कहते हैं कि एक ऐसी इबारत है, ऐसा खामोश इश्क की कहानी है जहां नजरों की मुलाकात, हल्की मुस्कान और अनकहे एहसास धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाते हैं। एक नजर से शुरू हुई कहानी दिल में सपने जगा देती है, कभी तस्वीर बहाना बनती है तो कभी बारिश और शाम का मौसम मोहब्बत को और गहरा कर देता है। साथ ही इन श्रोताओं ने बहुत से गीत गेस कर लिए हैं, लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन से गीत पूरे होते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुगम सुखांत प्रेम कथा, इस तरह से इबारत लग रही है हमें, और यहाँ प्रिया और प्रियतम

सहजता से एक दूसरे को मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी रंग लाती है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ये इबारत में दो प्रेमियों के बीच पनपते प्यार की सुंदर दास्तां है। आपस में नजरें टकराना, बातें करना, तस्वीर खींचना, ये एहसास, यही तो जिंदगी है। और साथ में एक साथ आगे बढ़ना। और साथ ही इन्होंने कुछ गीत लिखे हैं, देखते हैं लिस्ट के साथ मेल खाते हैं कि नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सिंदूरी, मखमली, शीतल, मनोरम, उस नीरव शाम की बेला में दो अनजान दिलों के बीच की एक चुंबकीय आकर्षण इस इबारत में नजर आता है। और भी काफी कुछ उन्होंने लिखा है और बहुत ही सुंदर शब्दों में ये संदेश हम तक भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता है जिन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया है कि शाम का समय था और शाम की हल्की हवा चल रही थी। ये बात उस समय की है जब उनकी शादी के कुछ दिन बीते थे और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ थे और साथ ही साथ वो अजमेर से हैं लेकिन मुंबई घूमने के लिए आए थे। और मोटरबोट का सफ़र, समुद्र की लहरें, हल्की हवा, ये सब चीज़ें इबारत पढ़ते हुए उन्हें याद आ रही हैं। और उन्होंने इसी तरह से कैमरा निकाला और एक शानदार तस्वीर खींच ली थी जिनसे उनकी धर्मपत्नी शर्मा गई और वो तस्वीर बहुत प्यारी है, बहुत ही यादगार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, आपके इसी तरह के जो अनुभव है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आईना बहुत सच्चा होता है मगर गुजरे जमाने के अक्स को दिखा नहीं सकता। आईना सिर्फ आज में जीता है जबकि तस्वीरें बीते लम्हों को कैद करना जानती है। और जब भी ये पन्ने पलटते हैं तो यादें खुल जाती है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत नूरी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा और खयाम का संगीत। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम में जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया था सिलसिला फिल्म से, उस गीत के लिए काफी सराहना आई है और ये भी कहा गया है, हमारी श्रोता लिखती है कि काफी दिनों के बाद ये गीत उन्होंने सुना है और लिखती हैं कि ये गीत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सुरीला सफ़र में ये आता तो दोपहर में है, लेकिन इबारत की इबादत से पता चलता है कि इबारत भरी दोपहर में शाम की बातें हो रही है, नज़रें मिलती हैं, थोड़ी बहुत झिझक के साथ फोटोग्राफी भी की जाती है और बेखुदी जैसे पथों पर इबारत बढ़ती चली जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। देखते हैं गीत आपके लिस्ट से मिलते हैं या नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत तो आप जो भी सुनवाना चाहें सुनवा दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अब इबारत के शब्दों में वो नहीं फंसेंगी, ये भी अच्छी बात है। जो जहाँ है बस उसे इंजॉय किया जाए, उसमें आनंद ढूंढ लिया जाए, ये इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के बारे में कि यहाँ इस गीत में लोक संगीत और पारंपरिक संस्कारों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। ये जो गीत है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश, शादियों या उत्सवों के उल्लास को बताता है। एक नववधु या प्रेमिका के मन की लज्जा व प्रेम का अनूठा चित्रण भी मिलता है इस गीत को सुनते हुए। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से आपने ये गीत सुना है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसके बारे में लिखा है। दोस्तों, इबारत को लिखते हुए और पढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक सुकून जरूर महसूस होता है, तो इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़ा ठहरना भी जरूरी है और उस ठहराव के लिए ताकि हम फिर से अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ चलें पूरे जोश के साथ, तो ये ठहराव बहुत जरूरी होता है, ये पड़ाव बहुत जरूरी होता है शारीरिक और मानसिक सुकून के लिए, दोनों चीजों के लिए। तो आप मुझे कमेंट में लिख लीजिए कि आपने अभी अभी हाल फिलहाल ब्रेक जिसे कहते हैं, या ये ठहराव जिसे कहते हैं, या पड़ाव जिसे कहते हैं, या अपने काम से या जिम्मेदारियों से कुछ वक्त अपने लिए निकालकर अपने आप को ताजगी से भरपूर कैसे किया, कब किया, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही इबारत पढ़ते हुए अगर इससे जुड़ी कुछ अनुभव है आप हमें लिख भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत हसीना मान जाएगी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, वे तो होली से किसी तस्वीर में कैद होकर जीवन भर के लिए खूबसूरत याद बन जाते हैं। इंसान भी हवा के झोंके की तरह है, जो कभी जीवन में ना हुआ वो घटित हो जाता है। इसीलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए। कौन जाने जिसे आप साधारण घटना समझ रहे हो, समय की सच्ची और खूबसूरत इबारत हो जिसे आप बार बार जीना चाहते हो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी कोई रिश्ता शब्दों से नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान से शुरू हो जाता है। कुछ मुलाकातें तस्वीरों में नहीं, दिल में कैद हो जाती है और फिर वही खामोश पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब बन सकता है, बन जाते हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और एक नजर में दिल को अपना सा लगने लगता है। फिर उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल मन में एक मीठा सा ख्वाब सजा देते हैं। कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है गीतों की लिस्ट, जो वो कह रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं गीत। उनमें से कुछ तो शामिल हो चुके हैं, कुछ अभी अभी शामिल हुआ है, अभी अभी जो शामिल हुआ है वो भी लिखा गया है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिस्ट लिख डाली है, लेकिन हमें इंतजार है आपके उन संदेशों का। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कौन सा वक्त है जो आप अपने आप को सुकून देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाते हैं, ऐसे कौन से अनुभव है जो इस इबारत को पढ़ते हुए आपको याद आ रहे हैं, आप वो किससे हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस गीत की तरफ, देखते हैं ये गीत लिस्ट में है या नहीं। आपकी लिस्ट में

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, हीरा पन्ना फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारी एक श्रोता कहती है कि शुरू के जो दो गीत सुनवाए गए वो सुनकर एकदम आनंद आ गया है। एक श्रोता लिखती है कि ये जो गीत तस्वीर उतारता हूँ अभी इन्होंने सुना, ये मेरे ख्याल से इन्होंने पहली बार सुना है, लेकिन कैसा लगा ये गीत ये जरूर लिखे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ये जो गीत है ये कुछ अलग है, तस्वीर उतारता हूँ, इस तरह के लिरिक्स जो है उन्होंने सोचे नहीं, लेकिन बहुत ही अलग तरह के लिरिक्स है, फिर भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़कर जो साथी मित्र बन गए हैं, हम उन्हें जानते हैं या ना जानते हैं फिर भी परिवार के सदस्य की तरह महसूस होता है, जिनकी तस्वीर फेसबुक पेज के माध्यम से दिल में उतर गई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश इस गीत को मद्देनजर रखते हुए आपने लिखा है। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि इबारत पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि मोहब्बत भी कैसी अनकही सरगम है, ना शब्द चाहिए ना कोई इकरार, बस एक नजर काफी है, और शाम की हवा में लहराती चुनरिया और आंखों में उतरता कोई अनदेखा संसार, जीवन जैसे ठहर गया हो और उस ठहराव में ही सुकून है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत प्रेम के उस एहसास को समर्पित है जो इंसान के दिल को बेखुद कर देता है और जिंदगी को सपनों तथा उम्मीदों से भर देता है। प्रेम का चरम बिंदु वो है जहाँ दो अलग अलग राहें बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से एक ही दिशा में बढ़ चलती है। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही जब तस्वीर की बात चली है तो क्यों ना हम उन तस्वीरों की बात करें जो हमारे पुरानी एल्बम्स से भरी पड़ी है और उनके द्वारा हम पुरानी यादों तक पहुंच जाते हैं। तो आज जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी बात भी है, और डिजिटलाइज हो चुका है हर चीज़, एक क्लिक में न जाने कितनी सारी तस्वीरें ले लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उस ज़माने में जहाँ एक रोल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ तस्वीरें हम ले सकते थे, एक अंक होते थे कि इतनी ही तस्वीरें आप खींच सकते हैं, और फिर इतने दिनों तक उसका इंतज़ार करना पड़ता था उन तस्वीरों को घर तक लाने में, और कैसी तस्वीर आई है, किसकी अच्छी आई है, किसकी ठीक नहीं आई है, वो सब यादें आप मुझसे साझा कर सकते हैं। क्या आपने वो सब तस्वीरें संभाल के रखी है, किस तरह से संभाल के रखी है, क्या उन पुरानी एल्बम तक फिर से कभी कभी बैठ कर जाते हैं, सुकून के पल बिताते हैं, देखते हैं क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज हमारे मोबाइल फोन की तस्वीरों में। लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगले गीत तक पहुंचते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ये वादा रहा फिल्म का नाम था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बस यही याद रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं विविध भारती के मोबाइल पेज के पहले की फीलिंग जो सिर्फ हम रेडियो सुनते थे वो आजमाना चाहूंगी और बस गाने सुनना चाहूंगी पहले की तरह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि हमारे लिए वो पल बड़े ही अनमोल होते हैं जब हम चार दोस्त मिल बैठते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और सच कहें तो कुछ समय से मानो हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमारे घर काम भी चल रहा है और जिन फूलों को देखकर हम सुबह मुस्कुराते हैं वो सब हमने कुछ दिनों के लिए छत पर रख दिए हैं, लेकिन अब जरूर मुस्कुराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जुबा खामोश है पर दिल में एक शोर सा है, तेरी तस्वीर का जादू ढलती शाम में कुछ और सा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है कि तस्वीर उतारने के कई साधन हैं, एक आंखों से उतारी जाती है, दूसरी मोबाइल से उतारी जाती है या कैमरे में, और तीसरी पेंटिंग के जरिए कल्पना के द्वारा उतारी जाती है या बनाई जाती है। जी हाँ, तस्वीरों की तो बहुत से साधन हैं उतारने के, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम यादों में जो खो जाते हैं, क्या उन तस्वीरों को सहेज के रखते हैं? वक्त मिलता है वहाँ जाकर उन तस्वीरों को देखने का, और क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में, बताएं मुझे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। तस्वीरों की बात चली और बहुत से मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं धड़ाधड़ करके, और लिखते हैं कि जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहां। ये बात तो बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत देर से फेसबुक पेज मिला नहीं, कहीं मिस हो गया था इसीलिए देर से मैसेज कर रहा हूं। कोई बात नहीं, आप जब पहुंच जाएं, जब मैसेज करें, हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अभी सिंगापुर में है और हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाती हैं वो, और हर एक जगह से कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर आती हैं। साल भर उन यादों को सजोए हुए एक अच्छा समय बीतता है, और इस वक्त वो सिंगापुर में है। वहाँ इतने प्यारे बीच हैं और हरियाली है, जहाँ उनका मन बहुत आनंदित फील कर रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वक्त ज़रूर निकालना चाहिए कहीं निकलने के लिए। वो कहते हैं ना, ठहराव बहुत ज़रूरी है फिर से एक शुरुआत करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में पुराने और नए दोनों ही गीत बज रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, दोनों ही सुनने को मिल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरों वाले जो दिन थे वो बहुत बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलग ही तरह का उपकरण हुआ करता था, और जिसमें रील होती थी, संभाल कर देख कर हम तस्वीर खींचते और यादें एक रील में कैद हो जाती। जब रील धुल कर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती, तो बड़ा मज़ा आता, और एक तरह से जो यादें हैं उनका पुनर्जन्म होता। ये देखकर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते कि भाई किसकी तस्वीर किस तरह से आई है। वो जो पल थे वो कुछ अलग ही थे। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले तस्वीरें लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, इसलिए उनमें सब्र और यादों की मिठास होती थी। आज एक क्लिक में तस्वीर सामने आ जाती है, मगर पुरानी तस्वीरों जैसा उस पल का इंतजार और ठहराव कहीं कहीं बहुत याद आता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल महाशय जो है, इंटरनेट जो है, बहुत उन्हें परेशान कर रहा है, आंख में चोली खेल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ ही लिया है हमारे इस प्रोग्राम को, और इस वक्त वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और श्रोता लिखते हैं कि आधे घंटे का सफ़र निकल चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा का सफ़र निकल चुका है, और घबराहट हो रही है कि सुरीला सफ़र में आज क्या हो रहा होगा, लेकिन अभी भी बाकी है, आप हमारे साथ बने रहें।

में से लिखा खयाम का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरों की दुनिया में अगर प्रवेश किया जाए तो चाहे वो एल्बम हो या फोन, वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और हम आ चुके हैं इस प्रोग्राम के अंत तक, आज के इस प्रोग्राम के समापन की ओर, तो हमें भी पता नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के दौर में फिल्म या तस्वीर उतारने के लिए विशेष कर फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, आजकल हर कोई फोटोग्राफर है, और पहले किसी विशेष अवसर पर खींची जाती थी तस्वीरें और उनकी अहमियत कुछ अलग होती थी। आजकल तो हर पल पल आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा है इन सबको। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पुराने कैमरे को उन्होंने शोकेस में सजाकर और सहेज कर रखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल फोटो से हमारे वो पुराने फोटो देखने में और उसमें खो जाना उन्हें बेहद पसंद आता है। ये जरूर है कि डिजिटल फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम नहीं कर सकते, लेकिन जो एहसास है वो तो कुछ अलग ही है। जी हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहले कैमरे रसायनों, नेगेटिव और रीलों पर काम किया करते थे जिन्हें बनवाने में समय लगता था। आजकल के समय में स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों से तुरंत फोटो आ जाती है और तस्वीरों को एल्बम में सुरक्षित संभाल के रखा जाता था, आजकल फोन में सुरक्षित है और नेट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल, इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत इस प्रोग्राम का।

साथियों, ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाएंगे। ये गीत आप सागर फिल्म से सुन रहे थे इस वक्त किशोर कुमार की आवाज में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न करते हैं। आज आपने ये सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ गीत नहीं गाती, वो मौसम बदल देती हैं, यादों को रंग देती हैं और खामोशियों में भी धुन भर देती हैं। आशा भोसले की आवाज भी एक ऐसी ही आवाज है, कभी शोक हवा की तरह चंचल, कभी रेशमी शाम की तरह नर्म, तो कभी दिल की धड़कनों पर थिरकती हुई। उनके गीतों ने प्रेम को शोखी, शरारत दी, उदासी को अपना संगीत और जिंदगी को मुस्कुराने का एक बहाना दिया। आज उस आवाज के जन्म लेने का दिन है। जी हाँ, आज आशा जी का जन्मदिन है।

श्रोताओं, कुछ कलाकार समय के साथ चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो समय को अपने साथ चलना सिखा देते हैं। आशा भोसले उसी दूसरी श्रेणी का नाम है। उन्होंने संगीत को कभी एक ही रंग में नहीं देखा। शास्त्रीयता से लेकर पॉप तक, गजल से लेकर फिल्मी गीतों तक, लोक की मिट्टी से लेकर आधुनिक प्रयोगों तक, हर नई राह पर उन्होंने अपने लिए एक नई पहचान रची। उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि उन्होंने उम्र को कभी अपनी कला की सीमा नहीं बनने दिया। हर दौर के संगीत को अपनाया, नए प्रयोग किए और हर पीढ़ी से एक रिश्ता बनाया।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रतापनगर और टांडा रोड के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा सहित अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में भारत रेल कोच, मेट्रो कोच और रेल इंजन निर्माण का बड़ा केंद्र बना है। 2014 के बाद से अब तक करीब 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रेल बजट 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिससे रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं।
1: इस वर्ष का रेल बजट 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये 12 वर्ष पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। यानी रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा खर्च हजारों हजार नए रोजगार बना रहा है। और ये रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान तो बनता ही है। एक बार रोड, रेल, पाइपलाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट बन गया तो फिर उसके आसपास नए उद्योग लगना शुरू हो जाते हैं, नए बिजनेस आते हैं, ये फिर नए रोजगार बनाते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई प्रवास के तीसरे दिन आज शारजा चैम्बर, बीआ और एमआर के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री यूएई के प्रमुख उद्यमियों और निवेशकों से वन टू वन संवाद कर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने कहा कि ऐसे निर्देश को अंतरिम चरण पर जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि ऐसे मामले पर एक अन्य जनहित याचिका पर कल सुनवाई की गई थी। प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों ने कमला पार्क की सड़क पर धरना देकर रास्ता जाम किया है, जबकि इंदौर समेत कई शहरों में भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ओपीडी और ओटी का बहिष्कार किया गया है। वहीं इंदौर के एमवाई अस्पताल में भी इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध जताया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों और इंटर्न डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। प्रदेश में अब तक औसतन 31.1 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश से करीब 2 इंच कम है। प्रदेश में सीजन की 83.5% बारिश हो चुकी है। भोपाल समेत 12 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि 31 जिले अभी भी सामान्य से पीछे हैं। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार 11 सितंबर तक रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा में शासकीय आईटीआई ने पिछले 10 वर्षों में पहली बार 100% प्रवेश लक्ष्य हासिल किया है। आगरमालवा के शासकीय नेहरू कॉलेज में विद्यार्थियों ने मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं तैयार कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर ने देश भर में 3रा स्थान हासिल किया है और शहर का AQI 77 दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए कैंप आयोजित किया जा रहा है। जबलपुर में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का सातवां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
4: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
5: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ 200 चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
7: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडे ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी संबंध को रद्द करने से इनकार किया और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में एक गीत अभी आप सुन रहे थे। 9-2-11 फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसटी बर्मन का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रहना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रहना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत पेइंग गेस्ट फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन की तर्ज और इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: सीखे।
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत काला पानी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस टी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस टी बर्मन का संगीत।

तुमसा नहीं देखा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या हाल है?
1: बस बिल्कुल ठीक है ममता जी। अच्छा एक बात बताइए कि जब अखबार आप पढ़ती हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ती हैं अखबार में?
0: ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कोई ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल दुखद है या बहुत उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। नहीं तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले संपादकीय वाला पेज पढ़ती हूँ। और एक जमाना था सबसे पहले अंतिम पृष्ठ पढ़ा करते थे जब प्रतिदिन कॉलम आया करता था शरद जोशी का, तो सबसे पहले अखबार का वो पलट देते थे और पीछे से शुरुआत करते थे, फिर संपादकीय वाला पृष्ठ, फिर हम फ्रंट पेज पर जाते थे। लेकिन आजकल कई बार खबरें ऐसी देखने को मिलती है, लगता है कि हाँ एक निगाह फ्रंट पेज पर डाल लो, उसके बाद संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसमें एक तो कई आलेख होते हैं और वो पढ़कर हमारे पास शब्दकोश का भंडारण होता है और शब्दकोश मिलते हैं, भाषा मिलती है और एक कंटेंट भी मिल जाता है, विषय वस्तु मिल जाता है।
1: कई बार ममता जी ऐसा होता है कि सब लोग जब पेपर खोलते हैं तो वो यही करते हैं कि पहला पेज देखा उसके बाद आखिरी में चले गए और फिर बीच में आ गए, तो जो उन्हें जो जिस चीज में रुचि है तो वो चीजें वो पहले पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम गृहणियां हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें कुछ अलग सी दिया गया है, व्यंजन दी गए या कहानी दी गई है, तो हम लोग उन चीजों को पढ़ना पहले पसंद करते हैं। तो
0: अपनी अपनी पसंद के अनुरूप लोग चुन लेते हैं कि कौन सा पृष्ठ पढ़ना है। और तीसरा पेज भी पढ़ना चाहिए, तीसरे पेज पर शहर की खबरें होती हैं। और जब पढ़ाई के दिनों में विश्वविद्यालय की खबरें हुआ करती थी, तब तो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इंटरनेट का, सोशल मीडिया नहीं था, तो कई बार अचानक यूनिवर्सिटी बंद होती थी और तो फिर जाना ना पड़े तो वो खबर सबसे पहले देखते थे कि AU क्लोज्ड, याद होगा है ना?
1: अपने बिल्कुल तो, सही कहा आपने, क्योंकि जो जिस समय दौरान दौर में हम लोग थे तो उस दौरान के समय की जो खबरें हमारे लिए जरूरी होती थी वो हम पहले ही पढ़ना पसंद करते थे।
0: तो एक मिनट हाँ। इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ। वो ये कि ये बताएं कि हमने तो अपनी बात बता दी, हमारे श्रोता बताएं कि अखबार पलटते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या पढ़ा करते थे। अगर कोई कॉलम याद है तो उस कॉलम का जिक्र करें, जैसे हमने अभी दो कॉलम का जिक्र किया, प्रतिदिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज की खबर की जब दिख जाता था जैसे बहुत बदली, कुहासा छाया हुआ, घनी बदली है, ठंड से हड्डियां कपकपा रही है, ऐसे में लगता था अरे बाप रे क्लासेस के लिए जाना है यूनिवर्सिटी और घर से बहुत दूर थी, तो पन्ना पलटते थे, AU क्लोज्ड जब आता था आहा आज तो नहीं जाना है, घर पे आराम से रजाई ओढ़ के बैठना है। तो ऐसी कोई बात याद आई है अभी बातों के दौरान तो जरूर लिखिए, बहुत संक्षेप में लिखिए हमारे श्रोता, है ना?
1: और मुहावरों की दुनिया में घर घाट एक करना, यानी कि किसी भी विषय पर अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं से भी किताबों से अखबारों से सब जगहों से लेना पसंद करते हैं।
0: अच्छा जरा बताइए तो, शिक्षा क्यों जरूरी है
1: भाई? अगर शिक्षा अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ी क्या पाएंगे, किताबें शून्य नजर आएंगी।
0: और किताबें कैसे पढ़ेंगी और करियर के लिए कैसे आगे बढ़ेंगी?
1: किताबें नहीं बढ़ पाएंगे तो करियर की बात ही बहुत दूर है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: शिक्षा जरूरी है, क्यों जरूरी है, और साथ में आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दे रहे हैं या नहीं, या बचा लिया है? खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा भी मुद्दा होता है घरों में, वो भी बताया।
1: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी है तो इस पर भी हम बात करेंगे। और सखी विशेष में सुरुचि वाघ jombe.com की संस्थापक CEO हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखिए, शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों जरूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चों को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीजें, अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ABCD, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते। कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है। और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे वाले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप वगैरह में, जहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ज्ञान को वो उस समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनको जो ज्ञान दिया जाए वो सीख सके।
1: और अभी एक तरीका और है, घर पे ही
0: जी
1: शिक्षा लेना, मतलब ऑनलाइन
0: जी
1: पढ़ाई करना, वो भी अपनी जगह पर। अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है स्कूल जाने की तो वो भी ठीक है, लेकिन जो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी आचार व्यवहार, बात
0: जी
1: करना और खेल कूद के साथ जो बातों बातों में सीख जाते हैं, वो घर पे बैठे नहीं सिखा पाते हैं। माता
0: बिल्कुल
1: पिता अकेले जो 30 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बच्चे सीख पाते हैं, थोड़ी न थोड़ी सबसे कुछ न कुछ पाते हैं, उधार लेते
0: बिल्कुल
1: हैं, तो ये सारी बातें, स्कूल की शिक्षा बहुत जरूरी है। और दरअसल शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोर लेना भी नहीं होता है, परीक्षा पास कर लेना भी नहीं होता है, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से सीखने की समझ भी शिक्षा से हमें मिलती है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षा यानी पढ़ाई बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे तभी तो हम आगे करियर भी चुन सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना है, जहां से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और उन सब के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर चीज की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकेंगे, और बिना हिचकिचाहट आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब ज्ञान जब मिलता है ना, तो उसके अंदर से, अपने अंदर से जो क्या आता है, मन से जो डर निकल जाता है कि हमें लगता है हमें ये चीज पता चल गई, इस बारे में, इस विषय में ये जानकारी हमें मिल गई है। और हम लोगों की जो सोच का दायरा भी शिक्षा से बढ़ता है। और इसके साथ साथ ममता जी, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें भी हमारी बहुत मजबूती आती है।
1: बिल्कुल। और महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है, एक समय था कि महिलाएं 4 दीवारी के अंदर कैद रहती थीं और उन्हें शिक्षा से परे ही रखा जाता था
0: जी
1: कि ठीक है इनका, इन्हें क्या होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा कर एक शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर जाकर वहां का कामकाज संभालेंगी। लेकिन अब दौर बदल चुका है,
0: बिल्कुल
1: महिलाओं को भी, लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए।
0: बिल्कुल
1: और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगी। जैसे बहुत सारे काम हैं जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे
0: जी
1: बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है
0: दुनिया होती है जी
1: उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं।
0: जी
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर बराबर,
0: बिल्कुल आपने
1: तो
0: बहुत सही
1: अगर
0: बात
1: वो
0: की
1: शिक्षित नहीं होंगी तो ये नहीं कर पाएंगे।
0: जी। और ये बहुत जरूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं और बेटियों को इन सब चीजों की जानकारी जरूर दें।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने फैसले लेने, खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
1: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और मंजरी जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में सभ्य समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ पूछते रहिए, सीखते रहिए, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी एक सखी लिखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। खदान से निकले पत्थरों को जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बन जाता है, उसी तरह शिक्षा का संस्कार होता है। शिक्षा ज्ञान कौशल आदतें और उचित आचरण को सीखने और सिखाने की निरंतर प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व को सर्वांगीण बनवाकर उसे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करती है, तो अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार, समाज और अनुभवों से हम हरदम सीखते रहते हैं। और लिखते हैं कि जी हाँ, हर प्रकार की शिक्षा में कुछ बुनियादी नैतिक तत्व या अच्छी बातें अनिवार्य रूप से समाविष्ट करती हैं। और इसी तरह से हमारे एक साथी और लिखते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। आज शिक्षा के बिना आज के जमाने में व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जीवन के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, व्यक्ति सफलता की और अग्रसर नहीं हो पाता है, अपने आप को लाचार समझने लगता है, संसार और जीवन को ठीक से समझ भी नहीं पाता, इस कारण शिक्षा जरूरी है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा कि शिक्षा मानव जीवन के विकास, ज्ञान प्राप्ति और अज्ञानता को दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है। तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना जी।

0: आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि बाग जॉम्बे.com की संस्थापक और सीईओ। ये एक सफल महिला उद्यमी है जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर जॉम्बे की सह स्थापना की। आखिर जॉम्बे क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है, तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट असेसमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। इसका कार्य होता है कि कंपनियों को उनके कर्मचारियों के व्यवहार, क्षमता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक और डेटा संचालित समाधान जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रदान करती है।
1: और सुरुचि के बारे में भी जानकारी दे दें कि वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यहां से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी इन्होंने काम किया।
0: जी, भारत वापस आकर उनके अंदर का उद्यमी उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनका असली रास्ता भारत की मिट्टी में छिपा है। साल 2010 में जब भारत में स्टार्टअप कल्चर अपनी शुरुआती सांसें ले रहा था, वे नौकरी छोड़ भारत आईं, वे समझ चुकी थी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सह संस्थापक मोहित गंडोत्रा के साथ मिलकर जॉम्बे की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी, एचआर का क्षेत्र भारत में पारंपरिक तरीकों से जकड़ा हुआ था। सुरुचि ने डेटा और साइक्रोमेटिक्स के आधार पर लोगों के व्यवहार को मापने की बात वो करती थी, तो कई पुरानी सोच वाले अधिकारी उन पर शक करते थे और एक युवा महिला एंटरप्रेन्योर के रूप में कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में अपनी बात मनवाना और भरोसा जीतना एक बहुत दोहरी चुनौती थी। लेकिन सुरुचि वाघ ने हार नहीं मानी, उन्होंने जॉम्बे को केवल एक डेटा कंपनी नहीं बनाया बल्कि उसे एक टैलेंट असेसमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में ढाल दिया।
1: और उन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान को इस तरह से मिलाया, तकनीक और मनोविज्ञान को इस तरह मिलाया कि कंपनियां ये समझ सकें कि कोई उम्मीदवार न केवल चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी कंपनी ने व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, व्यवहार और कार्य करने की शैली का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण के लिए वो कदम उठाती थी।
0: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने जॉम्बे के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली, एचआर टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
1: सुरुचि बाग की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्तां भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती है और उन्होंने खास पहचान बनाई।
0: जी, और हम लोग सुनते हैं
1: एक गाना।

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूँ तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं,
1: वो हल्की फुल्की बातों में उन्होंने लिखा है ना,
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी हैं जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती है, लिखती भी रहती है कुछ कुछ, उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती हैं

0: हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है, मगर अब आज का जो जमाना है वहां बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे शब्दों को बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था। ये सारी मैगजीन, चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे, तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती थी।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
1: आते भी थे,
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे। देखिए अंत में क्या, शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे। और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान, शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था। और देश दुनिया की जो होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
0: और ये जो पढ़ने की बात है, इससे इनकी बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या
1: कार्टून का भी रहता
0: था, तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठा कर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था, और कुछ कुछ अटकले लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
1: देखिए शिक्षा का यही फायदा हुआ ना, कहीं भी कुछ लिखा दिखा और पढ़ने लग गए।
0: साथ में पढ़ने का शौक, क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आपके लिए ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है
1: कॉलम आया करता था,
0: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी है मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना जरूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं अखबार का वो हिस्सा, या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
1: और ममता जी के अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उसको
0: वर्क
1: भी
0: पहली होती
1: हाँ,
0: थी
1: वा, हाँ वो भी और रंग भरो वाला रहता था तो उसको काट करके हम लोग याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे, वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
0: इसी तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताजा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है और यही शौक मेरे लड़के और अब पोती को भी है, पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए, तो बच्चों के पास उनके उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए,
0: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है
1: जी।
0: और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सके, आसमान के तारों की पहचान कर सके या फिर देश दुनिया के बारे में जान सके, बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: माता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूँ तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और

0: भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट, शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत जरूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में आने वाली पीढ़ी में, तो जरूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब उनमें रुचि पैदा होगी।
1: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय के उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है, तो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। धर्म पत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज मुझे मतलब लगती है, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ ले सबसे पहले। तो
0: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नजर डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा। और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ ले, वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू वो आकृष्ट किया करती थी।
1: मैं कहने वाली थी, और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया, फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया, तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा
0: चुका है। और पुराने अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकाल कर किताबों पर कवर चढ़ाना। जो स्कूल की किताबें होती थी, स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे। तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको सिखाने की जरूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूँ और बाकायदा 1-2-3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूँ, लिखती है, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट न जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करती थी।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है। कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
1: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बादी में टाइम मिलता है, महिला जी, ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़े और अपनी आदत जरूर बनाए अखबार।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताजा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे उस समय इंदौर में पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था सबसे पहले देखते थे राशिफल फिर न्यूज़ और भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ फिर आराम से मैनेजमेंट फंडा वगैरह वगैरह
1: बिल्कुल सही बात है
0: राशिफल भी हम देखा करते थे
1: बिल्कुल
0: तो रोजाना वाला राशिफल
1: रोजाना वाला
0: आज क्या होने वाला है
1: जी जी
0: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा
1: शुभ होगा और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु का है तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि उसमें क्या चल क्या रहा है आजकल क्या डिमांड है तो बड़ा अच्छा लगता था
0: तो अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन है बस यही यहाँ पर इस मंच से यही कहते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए किताबें पढ़िए अखबार जरूर पढ़िए फिलहाल ये गाना सुनिए

0: हे राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और ये कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना है तो उसके पहले हम कितनी तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो हम उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक कर देना, घर का घाट कर देना।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
1: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया, अंतर क्या है, कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
0: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अच्छी बात है। सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है। और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहरहाल ये बात बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई हैं, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहरी कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगुसराय, इश्क में मर जावा, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
1: जी।

0: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूं, और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूं। इट्स एन
1: जी,
0: ऑनर।
1: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
0: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम
1: जी
0: लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, टीचर टीचर नहीं खेला
1: जी
0: होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है, और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं। बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो
1: जी
0: उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता
1: जी
0: है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया, और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
1: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी,
0: हाँ
1: लेकिन जब ये तय किया होगा कि अब अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
0: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा। और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था अपने
1: जी
0: रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए, और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को, उनकी नकल उतार के जो एक्टर्स थे हमारे, उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था। और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी इसकी इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज निकाल के
1: जी
0: दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया। और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको,
1: जी
0: दूरदर्शन कशीर, उस पर मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज, जो कभी 7 एपिसोड, कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पर काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
1: जी तो एक बेस बन गया आपका वहां काम
0: हाँ,
1: करते
0: बेस बन
1: करते।
0: गया,
1: जी,
0: एब्सोल्युटली।
1: तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई
0: हाँ
1: का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी? किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
0: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है, मैं समझूंगा। क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम
1: जी
0: लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए,
1: जी
0: हम बिल्कुल बेघर हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया, कि
1: अच्छा
0: मुंबई इसलिए आऊंगा
1: जी
0: कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा। और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा। और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती
1: जी
0: है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं।
1: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित, मुल्क की अगर हम बात
0: हाँ,
1: करें?
0: मुल्क था और वो
1: जी
0: पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत, ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया,
1: जी
0: मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस
1: जी
0: गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ

0: सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे।
1: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो। तो कौन सा गाना यहाँ चला लें?
0: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
1: जीना या मरना या?
0: जी हाँ।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलोसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बन जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं। आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी जो उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है
0: जी।
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय मैं ये दोनों शोज कर रहा था, ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा
0: जी।
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइपकास्ट कर दिया जाता है एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहां से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे तो कभी भी फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ

0: कलाकार अगर मैं अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा?
1: जी
0: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं तो या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं अपनी कला को निखार रहा हूं तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो माँ था जी टीवी पे और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो। लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
1: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
1: जी
0: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज कर रहा होता तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना और आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी।
1: जी वो स्वीकार करना बहुत जरूरी है।
0: उनकी वजह से मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान
1: जी।
0: मैं मानता हूँ यूनिवर्स और मेरे ऑडियंस है, मेरे फैंस हैं जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
1: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको और स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है।
0: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
1: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
0: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है, लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान देके प्रकृति पे ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा।
1: जी तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्रीराम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूं और मैं उनके मंदिर जाया करता था और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ, उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीजों को आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैं चाहता हूँ कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
1: आनंद फिल्म से।
0: बिल्कुल
1: जी

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: तो विनीत ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहां जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है
1: जी,
2: जब सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से जरूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त आपके तुणीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
1: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था, एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
2: मेरा जो
1: कितने घंटों का
2: पॉपुलर शो था माए का, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था, तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
1: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें ब्लास्ट के थ्रू इनका,
2: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था, और मैंने लगातार बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए कम से कम 56-60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर, और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ। तो ये
1: तब तक बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए,
2: ये 2 दिन में सोया हूँ, उसके बाद वापस से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
1: तो ये 60 घंटे, 56-60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है।
2: सारी यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ, सो बहुत ड्रेनिंग था। लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
2: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
2: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी. जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले. तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है, अपना अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से. तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को, क्योंकि कई बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस.
1: ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए. और यही चीज है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट कर चले जाते हैं. क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है. और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया. लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है. लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है. चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है, वो लोगों को नहीं दिखता. जब वो पा चुका होता है और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है. और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है. तो मुझे लगता है जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
0: खुश होके
1: क्लब्स में जाते हुए या पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में. करें, लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए. सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है. तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं. उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे. और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा. सो ये बहुत जरूरी चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए.
0: जी, और जैसे कि आप इन दिनों टीवी, फिल्म, ओटीटी, वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो AI आ रहा है, AI की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
1: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा AI से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे. अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा. वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है. ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद LPG आ गया, और उसके बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया, और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया. तो ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू करते हैं. सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा. जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है.
0: जी
1: यही प्रकृति का नियम है. तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो,
0: जी
1: देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं. वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है. कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
0: जी
1: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानी को बता सकता है. तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है. कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है. और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए. हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है. मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे. कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार
0: जी
1: मुझे लगता है फैलेगा.
0: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही है तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया. ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं,
1: जी हाँ.
0: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सबका क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
1: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की. और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहां भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहां हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में,
0: जी
1: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी
0: जी
1: मैं वहां जाता हूँ. और खासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज हुई. उसकी निर्माता निकोल एंटिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफी जानी मानी डायरेक्टर हैं. इसकी स्टार कास्ट बहुत विशाल है. अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें.
0: जी
1: एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूं जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28 अगस्त को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और मैं
0: जी
1: चाहता हूँ कि यहाँ आए. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहां ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहां की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहां पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ. और मुझे इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए. और वो लोग बहुत खुश थे. मजे की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देखे कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे,
0: जी
1: वहां पर यहाँ की एक चैनल वहां पर टेलीकास्ट होती है
0: जी
1: जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहां पर टेलीकास्ट होता है. और जब मैं वहां गया, और वो इतना पॉपुलर शो है वहां कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है,
0: जी
1: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
0: वहां कैसे
1: इंडियन
0: पहुंच गए
1: एक्टर वहां
0: जी
1: कैसे हूं. पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे, मतलब
0: यहाँ भी
1: यहाँ
0: फैन
1: के
0: फॉलोइंग है
1: लोकल लोग तुम्हें पहचान रहे हैं. मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है.
0: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ. आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा? तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
1: जी हाँ, मैं हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया, एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक इशारा किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं मतलब बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली, और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है, कोई कुछ है। तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ। सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है। जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए, और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं, एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो।
0: जी,
1: he was the part of the show, he was playing my dad in that show, in that pilot. When I saw him, mere liye wo matlab mera ek mera freeze ho gaya tha ki jinko main itna manta hu aaj main unke samne khada hu, aur main gaya aur main seedha unke, wo baithe hue the aur main seedha jaake unke ghutne ke paas baith gaya aur maine apne haath unke ghutne pe rakhe aur maine kaha kaka matlab mere liye ye ek meri zindagi ka ek sabse bada main achievement manunga ki maine aapko dekha. And I was very emotional that time, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
0: तो यहाँ पे राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
1: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
0: तो वही सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो, जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे?
1: बावर्ची,
0: बावर्ची
1: बावर्ची,
0: तो बस
1: एनी डे मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और मेरे
0: हाँ
1: पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस
0: हाँ
1: तरह से काम
0: जी
1: किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो
0: हाँ
1: या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी
0: जी
1: वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना
0: हाँ बार बार देखी जाती थी, बागवान
1: अपने
0: से पहले यही देखी
1: हाँ,
0: जाती थी जी
1: बागबान से पहले अगर कोई
0: जी
1: फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है।
0: जी और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: भी कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं ऐसा लगता
1: बिल्कुल,
0: है वो
1: उनका
0: एक
1: स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और
0: हाँ
1: सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग स्टार,
0: स्टार जी, उनका एक अलग ही चार्म था।
1: अलग ही चाम था।
0: नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं कुछ और
1: बिल्कुल,
0: बन के आते हैं, फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं,
1: हाँ
0: उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया
1: ये
0: जा
1: सब
0: सकता है
1: असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री
0: जी।
1: के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है, तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए।
0: जी
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए,
0: जी
1: तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रैना है,
0: जी
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूँ,
0: जी
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है, वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है वो मेकअप, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है, उसका विनीत
0: जी
1: रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: जी
1: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो विनीत
0: बन
1: रैना है
0: जी
1: जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर
0: जी
1: वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
0: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं, शायद इतने साल से
1: देखिए
0: काम
1: हमेशा
0: करते
1: तो
0: करते आपको ये
1: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमीडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है।
0: अच्छा।
1: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहां पर मैं सब भूल गया और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए
0: जी,
1: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम खत्म किया, सीन पूरा खत्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम खत्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये सुचाओ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए और ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस मेंटेन करना आसान रहता है।
0: और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक

0: सुनने, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
1: जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए,
0: ठीक है,
1: क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है मैं आपको बताऊंगा।
0: बिल्कुल।
2: चांदनी

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन
1: हाँ,
0: आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले हैं आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता
0: क्रश
1: है
0: जी
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था,
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैं उनको देखता रहता था। उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहां ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे,
0: जी
1: तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन
1: याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक
1: जी
0: ये जाता
1: हाँ,
0: है गाना।
1: जी हाँ,
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन
0: जी
1: एक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ,
0: जी
1: अनलेस एंड अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊँ जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो
0: जी
1: शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था,
0: जी
1: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे। जब तक मैं उनको फील ना करूँ कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो
0: जी
1: याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूँ, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेन्ड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं।

0: तो अगर आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आर डी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का मुझे लगता है सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे। उनके जितने भी ट्रैक्स हैं आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने उन्होंने ही यू नो डिस्को और इस तरह के गाने, एक आर डी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी, इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया और मैं गया, मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं। लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन कहां रे उसको 100% रिमिक्स करना चाहूंगा।
0: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हैं हम।
1: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूं, तो जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मजा आया और दोबारा आना चाहूंगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सब सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिल मेरा मिस्र का बाजार भी हो सकता है, कोई धड़कन का खरीदार भी हो सकता है, कोई हो सकता है कातिल भी सफे यारा में, कोई हमदर्द दिलदार भी हो सकता है। अब तलक अश्क गिरा करते थे तन्हाई में, ये तमाशा सरे बाजार भी हो सकता है। मुझ पे ताना ना कसो, मुझको ना पागल समझो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार हो सकता है। उसकी चौखट पे जाना, जरा थाम के दिल अपना, वहाँ इकरार भी इनकार भी हो सकता है। आज

का खोना बहुत जरूरी है, इश्क होना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है उनको पा लेना। पहले दिल का खोना बहुत जरूरी है, जिसके सीने में दर्द ठहरा हो उसका रोना बहुत जरूरी है। उनसे होती हैं ख्वाब में मुलाकातें, मेरा सोना बहुत जरूरी है। सिर्फ यादों से घर नहीं बनता, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है।

सुबह लिखूं या शाम लिखूं, हर खुशी को तेरे नाम लिखूं, तेरा जिक्र लिखूं, फिर तेरी फिक्र और हर दुआ में तेरा नाम लिखूं, ख्वाब लिखूं या ताबीर लिखूं, तेरे इश्क को अपनी तकदीर लिखूं, लिखकर खुद को हीर तेरी, तुझको अपना राजा लिखूं, फिर सोचा तुझे याद करना छोड़ दूं, सोचा तेरा इंतजार करना छोड़ दूं, दिल को समझाया बहुत, भूल जा उसे, दिल ने मेरे मुझसे कहा क्या चाहती हो, मैं धड़कना छोड़ दूं।

इतनी मिलती है मेरे गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुझे देखने को ये दिल तरसता है, एक तेरे ही इंतजार में ये तड़पता है। कैसे समझाऊं इस दिले नादा को जो मेरा होकर भी तेरे लिए धड़कता है, कि मेरी सुबह का पहला ख्याल हो तुम, मेरे हर सवाल का जवाब हो तुम, चांद हो तुम मेरी हर रात का, मेरी जिंदगी का हंसी ख्वाब हो तुम, मुझको कुछ इस तरह याद हो तुम जैसे मोहब्बत की कोई किताब हो तुम। बर्बाद है हम तेरी मोहब्बत में और हमारे अंदर आबाद हो तुम।

0: तुम यूं ही ना मिला करो हमें, मंजिल की राह में हम रास्ते भूल जाते हैं तुम्हारी आंखों को देखकर। तुम मेरी दुआओं का वो हिस्सा हो जिसे मांगते वक्त लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा सुकून, तुम्हें खोना खुद को खोना, तुम्हारा होना मेरी जिंदगी, तुम्हारी खामोशी मेरी सजा, तुम्हारी आवाज मेरी जरूरत, तुम्हारी मोहब्बत मेरी राहत, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी। तुम्हें चाहने में हमने हद की भी हद कर दी, वरना यूं ही कोई दिलो दिमाग पर हुकूमत नहीं करता।
1: मुझे

आँखों को समंदर कहूँ तो कम है, तेरी बातों को सुकून कहूँ तो कम है, तेरी मुस्कुराहट को गुलाब कहूँ तो कम है, तुझे क्या कहूँ दुनिया जहाँ कहूँ तो भी कम है, के रूह की प्यास बुझा दी है तेरी कुर्बत ने, तू कोई झील है, झरना है, घटा है, क्या है, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है, शिद्दत और भी शदीद होती जा रही है, आपसे मोहब्बत और भी मजीद होती जा रही है, दिल तो था ही आपका दीवाना जाने जा, अब तो रूह भी आपकी दीवानी होती जा रही है।

मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ एनसीईआरटी की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं।

0: कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओ, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओ, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: जी, हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
2: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
4: 1, 2, 3 सब छुप गए ना। 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है।
5: यहाँ यहाँ यहाँ जल्दी
4: दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
3: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
1: मोहित, अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
3: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
4: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
3: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
4: बबली, तुम अलमारी के पीछे हो?
1: धप्पा!
4: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
3: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
4: मारिया, तुम पलंग के नीचे हो?
5: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
1: अंदर छुपा।
4: मारिया,
1: धप्पा!
5: अरे नहीं।
3: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
6: दादी, दादी, दादी, हिलना मत, हिलना मत, जीत आया है, वो मुझे धप्पा बोल देगा।
4: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
1: जोर से
4: सिमरन धप्पा।
5: फिर पकड़ लिया।
4: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
3: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
0: जी धप्पा। अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
2: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल। तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
4: साथियों पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापक गण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
5: साथियों आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
6: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
7: नमस्कार।
5: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
7: जी जी
5: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
7: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
8: जी,
7: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
8: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
7: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
8: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
9: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
7: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
9: अच्छा।
7: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
5: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे।
9: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
5: अच्छा।
9: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
7: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
9: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
7: जी,
9: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
7: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
9: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
5: जी।
9: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
7: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
9: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
5: जी। नीलम, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
10: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
9: अच्छा, एक बात बताओ
10: जी,
9: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
10: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
9: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
8: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
10: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
9: हाँ, ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग-अलग दिखाई देता है।
10: जी
9: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे-धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं।
10: जी
9: पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
10: अच्छा
9: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
10: ऐसा विकार होता क्यों है?
9: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
10: अच्छा हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
9: सरिता अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हां
8: जी मैडम।
9: हां तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
10: जी
9: इन बच्चों की आयु सीमित होती है इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
10: जी
9: केवल बच्चों को और उनके माता-पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
10: जी ठीक है।
5: हां दीपिका जी आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
10: जी डॉक्टर पुष्पा ये सीमा है ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
11: नमस्ते
5: डॉक्टर पुष्पा। ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना उनकी बहन की बेटी है।
9: अच्छा अच्छा सीमा कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
11: मैं 7वीं में पढ़ती हूं।
9: रेनू जी जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
12: डॉक्टर पुष्पा मैंने और नीलम जी ने इसकी मां से विस्तार में बातचीत की है।
9: अच्छा
12: यह जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब यह 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी यह ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
10: डॉक्टर पुष्पा सीमा बहुत होनहार है। यह बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले लेकिन यह गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
12: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं उस तरह यह खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी-कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
9: अच्छा
12: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
10: डॉक्टर पुष्पा कभी-कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
12: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
10: जी
12: कुछ लोगों का शायद यह मानना है कि यह कोई छूत की बीमारी ना हो
9: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
10: सीमा तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
11: हां संभव तो आता है पर लिख नहीं सकती।
12: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
9: अच्छा
12: और ये साफ-साफ बोल नहीं पाती इसे लोग इसकी बात ठीक-ठीक समझ नहीं पाते।
10: रेनू जी इसको ये समस्या कब से है?
12: ये बहुत ही छोटी थी करीब 4 महीने की रही होगी तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
9: अच्छा
12: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
10: डॉक्टर पुष्पा इसको समस्या क्या है?
9: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
10: डॉक्टर पुष्पा हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
9: देखिए इसको हर कार्य छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर क्रमानुसार लगाकर थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार अभ्यास कराइए।
5: जी आज हमने तीन प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
9: जी
5: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
6: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
9: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
5: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
9: अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
4: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार अभ्यास कराना। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
13: अबे कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना।
14: हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
15: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
13: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
16: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए श्रेणी में कर दिया है। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भूमिका है, इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। तो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एआई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्म युगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में

0: विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंदी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Global FinTech Fest GFF 2020.
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: Akashwadi at 90.
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दुबई में निवेशकों से 1-to-1 बैठकें की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में विदिशा मेडिकल कॉलेज में कैंसर डे केयर सेंटर की शुरुआत हुई। और प्रदेश में अब तक सामान्य बारिश का 83% कोटा पूरा। रीवा और शहडोल संभाग में 11 सितंबर तक तेज बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2,800 किलोमीटर के विशेष माल ढुलाई गलियारे का पूरा होना 21वीं सदी के भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और देश में बदलती कार्य संस्कृति का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा सौर, परमाणु और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को देख रहे हैं। प्रौद्योगिकी की भविष्य में पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आगामी उद्योग पूर्ण रूप से ऊर्जा संचालित होंगे। सरकार इसके लिए मजबूत और बहुक्षेत्रीय ऊर्जा तंत्र स्थापित करने पर ध्यान दे रही है।
1: अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रतापनगर, वडोदरा और टांडा रोड के बीच नई मेमू यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे धार जिले में आजादी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई। साथ ही छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना के जोबट टांडा रोड हिस्से का शुभारंभ किया गया। टांडा रोड पर केंद्रीय राज्य मंत्री और धार महू सांसद सावित्री ठाकुर मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक हैं। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा। भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म और राम नामी को जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र चुना गया है। फिल्म ब्रह्म युग्म के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। 1954 में शुरू हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दुबई में AIIM कांग्रेस 2026 के तीसरे दिन निवेशकों और उद्यमियों के साथ 1-to-1 बैठकें की। मुख्यमंत्री ने डीपी वर्ल्ड के सीईओ रिजवान सुमार में से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर चर्चा की। उन्होंने पोवारखेड़ा लॉजिस्टिक्स हब को अंतरदेशीय लॉजिस्टिक्स के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बताएं। उन्होंने शाराफ ग्रुप के इंदौर और पीथमपुर में रेल साइडिंग युक्त लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। इसमें 30 से 50 मिलियन डॉलर के निवेश से करीब 300 से 600 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को वर्ष 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कैंसर डे केयर सेंटर की शुरुआत हुई। सेंटर का उद्देश्य विदिशा और आसपास के मरीजों को कैंसर के इलाज की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। इस संबंध में एम्स भोपाल और मेडिकल कॉलेज विदिशा के बीच MOU भी हुआ है। इसके तहत सेंटर को एम्स भोपाल का मार्गदर्शन, विशेषज्ञों की विजिट और जरूरत पड़ने पर एम्स में इलाज की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से दूर रहने की अपील की।
3: एक तो है इलाज, दूसरा बीमारी ना हो, इसलिए जीवन शैली बदलने की भी जरूरत है। अब सवेरे सवेरे उठाया है, उठे और घिसी सुपारी और जर्दा और दिया मोमिन, अब उसमें कितनी कैंसर की संभावना बढ़ती है। और दूसरा ये नशा, किसी भी तरह का ये नशे का नाश कर दो भैया, अपने जिले से नशा कैसे खत्म हो, अवेयरनेस भी हम चलाए, प्रशासन कार्रवाई भी करे। जीवन शैली ऐसी हो कि बीमारी कम से कम हो ना, फिर भी कभी कभी होती है। खाओ पियो भी ऐसा कि जो शरीर को लगे।
0: प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ई वीडियो कंटेंट अब कल से ई ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कल शाम 5 बजे चैनल का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 10 डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के ई कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। अब तक 2305 वीडियो शूट किए गए हैं, जबकि 954 वीडियो की एडिटिंग पूरी हो चुकी है। वीडियो की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम के अनुरूप होने का वैलिडेशन बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में नवे राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कल से 8 अक्टूबर तक हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया कल इंदौर से अभियान का शुभारंभ करेंगी। एक माह तक चलने वाले अभियान में पोषण मेले, रेसिपी प्रदर्शनियां और बच्चों की शारीरिक माप जैसी गतिविधियां होंगी। स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों, पर्याप्त प्रोटीन और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। 11 सितंबर से बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई मापी जाएगी और कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 100% लाभ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। प्रदेश में अब तक सामान्य बारिश का 83.5% कोटा पूरा हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का असर अधिक रहेगा। रीवा और शहडोल संभाग में 11 सितंबर तक तेज बारिश होने के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में विश्व साक्षरता दिवस पर जगमल गांव की निर्मला साकेत की कहानी प्रेरणादायक बनी है, जो कभी अंगूठा लगाती थी और अब स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती हैं। कटनी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में सेंट्रल GST की 5 टीमों ने 365 डिग्री फिटनेस सेंटर के 5 ठिकानों पर कार्रवाई कर 1 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी है। मनीला में कान्हा टाइगर रिजर्व के खापा क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में NSS ने विश्व साक्षरता दिवस पर शिक्षा सबका अधिकार है का संदेश दिया। झाबुआ के मेघनगर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई, जिसमें करीब 90 आवेदन प्राप्त हुए। आगर मालवा में कृषि विभाग की टीम किसानों के खेतों का निरीक्षण कर सोयाबीन फसल में रोग कीट नियंत्रण के लिए दवाओं के छिड़काव और अन्य उपाय अपनाने की सलाह दे रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
5: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
4: क्या, कैसे?
5: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
4: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
5: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। कार्यक्रम किसानवाणी के लिए श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से।

0: बुंदेली समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे बुंदेली समाचार, यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए किसान वाणी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
2: राम राम स्वीकारें किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना की। भैया अभी 3 दिन पहले हम सब ने जन्माष्टमी मनाई है। भगवान श्री कृष्ण को नाम लेते ही भाई हमारे मन में गोकुल गैया और गोपाल की सुंदर छवि मन में उभर आते है। भैया कन्हैया जी को जीवन और गोकुल की परंपरा हमें गोवंश के प्रति प्रेम को संदेश देते हैं, है ना? और जई भावना को आज के वैज्ञानिक पशु पालन से जोड़त भय राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से देसी गोवंश संरक्षण संवर्धन और उत्पादकता बढ़ावे की कोशिश में लगे हैं, जैसे पशु पालकों की आमदनी बढ़ सके। भैया राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा बेहतर प्रजनन सुविधा और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अच्छी नस्ल के पशुधन तैयार हो सके और देसी नस्लों को संरक्षण करा जा सके। साथ ही स्वस्थ पशु संतुलित आहार सही टाइम पे टीकाकरण और वैज्ञानिक ढंग से पशु पालन के द्वारा पशुपालक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, मतलब गैया भी खुश और ग्वाल भी खुश। सच्चे अर्थों में देखी जाए तो जय कृष्ण भक्ति है। आप हरण का एक बात और बता देवे, जैसे पशुधन की अच्छी सेहत के लाने उनकी देखभाल जरूरी है, वैसे ही फसलों की अच्छी सेहत के लाने उनकी निगरानी और देखभाल भी बहुत जरूरी होते है। भैया हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली की। जय एक ऐसी व्यवस्था है जाके अंतर्गत आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं और जाके अपनी फसलों के नमूना लेके जा सकते हैं, फोटो लेके जा सकते हैं और बाकी सही जानकारी सटीक जानकारी लेके आ सकते हैं। जे के लाने आपको कहीं कोई

0: पैसा नहीं देने हैं, पूरी तरह सब व्यवस्था निशुल्क है। और सरकार की ई व्यवस्था को उद्देश्य ही जो है कि किसान के लाने सही टाइम पे सही रोग या कीट की जानकारी मिल सके, जैसे कि वो सही टाइम पे सही दवाई को सही मात्रा में छिड़काव कर सके। तो भैया आप भी सरकार की व्यवस्था को लाभ उठाओ। अगर फसलों में कहीं कोई कीट व्याधि दिख रही है तो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विभाग में जाके संपर्क करें और अनुशंसित दवाइयों को प्रयोग करें। भैया जैसे अभी हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करी और बात करी फसलों में रोग और कीट व्याधियां लगने पे का करें, मनो एक बात तो है, गांव की समृद्धि और विकास केवल अच्छी फसल होबे से, स्वस्थ पशु धन होबे से नहीं है। आज जरूरत है गांव में युवा और ग्रामीण परिवार अपने हुनर को रोजगार में बदलें। भैया एक ऐसी बातचीत हम आज आपके लाने सुनवा रहे हैं, ग्रामीण स्वरोजगार के लाने जरूरी है कौशल विकास। डॉक्टर अनिल मुरलीधर विसेन से बात कर रही हैं अमृता जैन।
1: ग्रामीण स्वरोजगार के लिए जरूरी कौशल विकास, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनिल मुरलीधर विसेन जी, जो वाइस चांसलर हैं सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में। सर स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकाशवाणी का कि इस विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला।
1: बिल्कुल सर। और सर चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण कौशल विकास की, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि ग्रामीण कौशल विकास से आपका क्या आशय है और आज इसकी आवश्यकता क्यों है?
2: ग्रामीण कौशल विकास का अर्थ केवल युवाओं को प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता, प्रतिभा और संसदीय संस्थाओं का रोजगार से जोड़ना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
2: भारत एक बड़ी आबादी गाँव में रहती है और इन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, पशुपालन है, पर्यटन है, डिजिटल सुविधाएं हैं और छोटे उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। आज जो जरूरी है वो हमारी ग्रामीण युवा को केवल रोजगार खोजने वाला नहीं बनके बल्कि रोजगार देने वाला भी बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गांव का युवा यदि कुशल है तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मजबूत गांव ही आत्मनिर्भर भारत की एक आधारशिला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने बात की ग्रामीण युवाओं की, तो ये बताइए कि भारत सरकार ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चला रहा है?
2: भारत सरकार ने कौशल विकास को बहुत एक राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है और इसमें से जो प्रमुख योजना है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसको हम PMKVY 4.0 बोलते हैं। दूसरा जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, DDU-JKY। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना है, PMNAPS। और जन शिक्षण संस्थान तथा ऐसी और सारी योजनाएं हैं, विशेष रूप से DDU-JKY ये ग्रामीण गरीब युवाओं को बाजार की मांग अनुरूप प्रशिक्षण और रोजगार जोड़ने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ जो है स्किल इंडिया डिजिटल हब, एक प्रशिक्षण, रोजगार और अप्रेंटिसशिप, और उसके अलावा जो है उसमें उद्योगों में एक अवसर को एक डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रयास किया है।
1: सर ये तो आपने कई ऐसी योजनाएं बताई जो हमारे युवाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण युवाओं के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है?
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विकास योजना है, जिसमें पारंपरिक कौशल के अलावा जो आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे जो भविष्य के जो कौशल है, भविष्य की जो स्किल है, उसके ऊपर में विशेष ध्यान दिया है और इन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। जैसे कि एक ड्रोन के माध्यम से हम पूरे के पूरे कृषि को उसका पूरी निगरानी करना, फसल की निगरानी करना, और आजकल AI टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी सक्षम है कि कौन सी बीमारी लगने वाली है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के माध्यम से, तो उसका पहले से ही वो हमको भविष्य बता सकती है कि ये वाली बीमारी लगेगी और उसके लिए हमारा किसान तैयार हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो PMKVY युवाओं के लिए बहुत लाभकारी है।
1: जी सर, अभी आपने चर्चा के दौरान कहा DDU-JKY एक योजना है, तो सर ये बताइए कि डीडीयू जीकेवाई ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष रूप से किस प्रकार महत्वपूर्ण है?
2: डीडीयू जीकेवाई ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण के अलावा सीधे रोजगार के अवसरों को जोड़ना होता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशिक्षण केवल प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेशन तक नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने का पूरा जोर दिया जाता है। इसमें हम बोलते हैं कि स्किल देना, फिर इम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों मिलकर एक ग्रामीण परिवार की आय बढ़ा सकते हैं, पलायन को भी बहुत कम करने की में मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है जिसमें सिर्फ सर्टिफिकेट ना दे करके इम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी वो आगे बढ़ सकते हैं।
1: सर ये बताइए, क्या केवल सरकारी योजनाओं से ग्रामीण कौशल विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता?
2: मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन सिर्फ सरकार ही ऐसा कर सकती है, ऐसा उसके प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं है। हमें सरकार प्लस विश्वविद्यालय, उद्योग और स्थानीय प्रशासन, पंचायत हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं और वित्तीय संस्थाओं के बीच में एक साझेदारी बनानी होगी। और इसमें जो है एक विश्वविद्यालय का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ वो डिग्री देने के लिए न बने, उनको जो है एक स्किल एजुकेशन पे जाए और डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जिसमें गांव के लोगों को उसका फायदा मिल सके।
1: सर ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं?
2: इसमें मेरे विचार से बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन जो मेन जो चुनौतियां हैं वो उसमें एक होता है कि स्किल जो ट्रेनिंग है वो उसकी जो पहुंच है वो बहुत सीमित है। दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो उसका एक लिमिट है। फिर उद्योग की वास्तविक आवश्यकता के जानकारी का अभाव, मतलब अगर मैं बहुत लोगों से जब मिलता हूँ तो उद्योगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास में जो युवा आते हैं उनको स्किल एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। वो बोलते हैं कि हमको एक रेडीमेड मैन पावर चाहिए जो हम दे नहीं पाते हैं, और विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही, बहुत सारे विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसका अभाव जो होता है वो ग्रामीण युवाओं तक पहुंच नहीं पाता कि उद्योगों की किस चीज की जरूरत है और उस चीज की जरूरत के हिसाब से वो तैयार हो जाए। तो एक ये जो अभाव होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। एक प्रशिक्षण के बाद में रोजगार के बाजार से जुड़ाव की कमी, जिसमें कि प्रशिक्षण तो हो गया उसका, लेकिन रोजगार का जो बाजार है उससे जुड़ाव में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, वो लिंक नहीं कर पाते। इसमें मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ ट्रेनिंग ना हो, बल्कि एक ट्रेनिंग के बाद में एक सर्टिफिकेशन हो, सर्टिफिकेशन के बाद में उसको जो है इंटर्नशिप हो, जो इंटर्नशिप के बाद में इम्प्लॉयमेंट हो और मेंटरिंग हो।
1: सर आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही, अब एक महत्वपूर्ण सवाल
2: जी,
1: महिलाओं की ग्रामीण कौशल विकास में क्या भूमिका हो सकती है?
2: महिलाओं की ग्रामीण कौशल विकास में सबसे बड़ी भूमिका है और ये सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग, टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, डिजिटल सर्विसेज, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर सपोर्ट, डेयरी, एंटरप्रेन्योरशिप और ई कॉमर्स जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो मतलब एक ग्रुप बना करके बहुत सारी महिलाएं जो हैं उसमें जुड़ सकती हैं, जिसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल मार्केटिंग और बाजार से जोड़कर हम महिलाओं को बहुत आगे भी लेके जा सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो उसका लाभ केवल एक व्यक्ति को नहीं मिलता बल्कि पूरा परिवार और अगली पीढ़ी को मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। अभी हमने बात की नई तकनीक, नए विज्ञान का जमाना है।
2: जी जी,
1: तो ये बताइए कि नई तकनीक और डिजिटल शिक्षा ग्रामीण कौशल विकास में किस प्रकार का परिवर्तन ला सकती है?
2: आज डिजिटल जो युग है और शिक्षा है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति बन के निकला है। डिजिटल डेटा है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल एक हमारा स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विद्यार्थी और युवा ऐसे बहुत सारे कोर्सेस और ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। आजकल अगर आप गूगल पे जाएंगे, TCS पे जाएंगे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी जो है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खोल के रखी है कि जिसमें वो स्किल अपना ले सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ युवाओं को गाँव में केवल मोबाइल ही चलाना नहीं है, लेकिन बल्कि मोबाइल को एक लर्निंग अर्निंग और एंटरप्रेन्योरशिप का एक माध्यम बनाना चाहिए, क्योंकि एआई और डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज, ये जैसी जो क्षमता है वो ग्रामीण युवाओं को स्थानीय बाजार से और राष्ट्रीय वैश्विक बाजार तक पहुंचा सकती हैं।
1: और अब अंत में यदि आपको हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए कोई संदेश देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ग्रामीण भारत का जो युवा है उसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी डिग्री नहीं, आपकी क्षमता और आपकी कौशल है। और आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत नए नए रोजगार आ रहे हैं, पहले जैसे नहीं रहा। हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में, आज एआई के जमाने में एआई एजेंट्स आ गए हैं, इससे आप अपना बहुत सारा काम करवा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये ना करें कि मैं नौकरी के तरफ जाऊं। आप युवा हैं, आप ये देखें कि मैं अपने कौशल को कैसे पहचानूं और नई तकनीक कैसे सीखूं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे जाऊं। मेरा यह मानना है कि एक कुशल युवा, सशक्त गांव, आत्मनिर्भर परिवार और विकसित भारत, ये तभी होगा जब हमारा युवा, गांव में रहने वाला, सशक्त होगा, गांव सशक्त होगा, इंडिपेंडेंट इनकम होगी और आगे बढ़ पाएगा।
1: सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।
0: भैया अबे हमने जानो, ग्रामीण स्वरोजगार के लाने कौशल विकास कितो जरूरी है। कहते हैं ना, हुनर जब मेहनत से जुड़ जाए तो आत्मनिर्भरता की रास्ता और आसान हो जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से ही हम भगवान कृष्ण की, गैया की, कन्हैया की बात कर रहे हैं। भैया हम बात तो आपसे कर रहे हैं, मनो हमारे मन में कन्हैया जी की एक छवि तैर रही है। कोमल कोमल हाथ, कोमल शरीर, मंद मंद मुस्कान और मनमोहक उनकी छवि, बस ऐसो लगत है अभी सामने आ जाए तो अभी उन्हें कहिया ले लेवे। एक ऐसो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं छगन लाल वर्मा और साथियों के सुरों में।

0: का बात है भैया, मजा आ गयो। इतो बढ़िया मीठो गीत सुन के मन अच्छो हो गयो है। अब हम आपके लाने आगे ले चल रहे हैं एक ऐसी जानकारी की तरफ जो किसान भैया आगामी रवि मौसम में सब्जी उत्पादन करबो चाह रहे हैं, नर्सरी लगा रहे हैं, के भी जानबो चाह रहे हैं कि कौन सी पौध लगाएं, कैसे लगाएं, का तैयारी करें, यही के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मेदनी प्रताप सिंह, CIAE यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। सुनते हैं उनकी दईजा जानकारी।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम लोग चर्चा करेंगे रबी में सब्जियों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। जो किसान भाई हमारे रबी सीजन में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं उनके लिए अब सही समय आ चुका है नर्सरी डालने का। किस तरीके से हम सब्जियों की नर्सरी डालें, बीज की बुआई करें, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी के सीजन में मुख्यतः सब्जियों की फसलों में जैसा कि टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, बैगन, गोभी वर्गीय हमारी जो सब्जियां हैं जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, ये जो हमारी सब्जियां होती हैं इन्हें हमें सबसे पहले नर्सरी में इनकी पौध तैयार कर लेनी चाहिए। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें नर्सरी प्रबंधन यानी किस तरीके से करना है जिससे कि हमारी पौध स्वस्थ तैयार हो, और जब हमारी पौध स्वस्थ होगी तो हमें उत्पादन ही भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाई हमें सबसे पहले ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जहां पे मृदा की उर्वरता अच्छी हो, और हम जब भी नर्सरी का बनाएं नर्सरी हमेशा जमीन से लगभग 5 से 6 इंच उठा करके बनानी चाहिए, और नर्सरी की चौड़ाई हमारी 1 मीटर रखनी चाहिए, लंबाई हम अपने अनुसार रख सकते हैं। तो किसान भाई अच्छी तरीके से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और नर्सरी को लगभग जमीन से 4 से 5 इंच उठा करके बनाएं। उसके बाद किसान भाइयों आप सबसे जो मुख्य बात होती है हमें बीज का चयन, उन्नतशील और प्रमाणित बीज हमें बोना चाहिए। उन्नतशील और प्रमाणित बीज का चयन करें, और बीज जो है हमें अच्छी जगह से ही लेना चाहिए। अच्छी जगह का मतलब होता है हमें कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और जो भी हमारे सरकारी प्रमाणित संस्थाएं हैं उन जगहों से हम बीज का, अच्छी प्रजातियों का लेके आए और उनको फिर हम जो है बुआई करें। तो नर्सरी हमने तैयार कर ली, अच्छी तरीके से मिट्टी को हमें भुरभुरा कर लेना चाहिए, उसमें हमें वर्मी कंपोस्ट या जो हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको अच्छी तरीके से मिला करके और उसको उठा करके नर्सरी को बनाएं। प्रॉपर उसमें अच्छी नमी होना चाहिए। उसके बाद हम 3 से 4 अंगुल में लाइन खींच करके नर्सरी में जिस तरीके से जैसा कि मैंने कहा टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैगन है या गोभी वर्गीय है, उनके बीज को हमें डालना है। ध्यान ये देना है कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा हमें बीज को नहीं बोना है, क्योंकि इन सब्जी वर्गीय पौधों के जो हमारे बीज होते हैं काफी छोटे होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा गहराई नहीं रखनी। अगर ज्यादा गहरी हम सब्जी की बीज को डालेंगे तो फिर उसका अंकुरण अच्छा नहीं होगा। तो किसान भाई अच्छी तरीके से हमें बीजों की बुआई कर दें। बुआई करने के उपरांत हमें बारीक वर्मी कंपोस्ट या बारीक सड़ी हुई गोबर की खाद से उनको अच्छी तरीके से ढक दें। थोड़ा हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये सितंबर का महीना चलता है, कई बार हमारे मानसून का जो लौटती मानसून की बारिश है और वो काफी तेज होती है, तो उससे बचाव, नर्सरी को बचाने के लिए हमें जो है अगर हो सके यदि हमारे पास पॉलीटनल है तो बहुत अच्छा है, पॉलीटनल उसके ऊपर रख देना चाहिए। पॉलीटनल का मतलब ये होता है कि हम बांस की खपच्चियों का भी बना सकते हैं और हमारा आयरन का भी यानी लोहे की भी टनल को बना करके उसके ऊपर सफेद रंग की जो पॉलिथीन होती है उसको हम ढक देते हैं, जिससे कि अनावश्यक जो बारिश है, ज्यादा नमी है, वो हमारी नर्सरी को नुकसान ना पहुंचा पाए। किसान भाई देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद आपकी नर्सरी जमना शुरू हो जाएगी, और उसमें हमें फिर एक ध्यान देना है कि कई बार अगर हम देखते हैं कि शुरुआती अवस्था में हमारे नर्सरी में बीमारियां कुछ आने लगती हैं जिसे हम कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं, जो आप देखते हैं कि छोटे पौधे ही जैसे ही उगते हैं और उनमें जो है फंगस का अटैक हो जाता है और वो जो है जड़ के पास से ही तने से वो के गिर जाते। इससे बचाव के लिए हमें कार्बंडाजिम या मैंकोजेब नामक जो फफूंद नाशक दवा है इसका 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग करना चाहिए। तो हमारी नर्सरी पौधे दी देखते हैं देख बहुत ही अच्छी स्वस्थ नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है। और किसान भाई रवि फसलों में कुछ हमारी सब्जियां हैं जिनको हम सीधे खेत में बुआई करते हैं, जैसे आप देखते हैं पालक है, धनिया है, मेथी है, गाजर है, चुकंदर है, और यहाँ तक हमारी सब्जी मटर भी हम जो है सीधे बुआई करते हैं। खेत की तैयारी हमें इस तरीके से करना है, संतुलित मात्रा में हम खेत की तैयारी करें जिससे कि हम अच्छे से अपने उसमें जो है उर्वरकों को दें और सभी उर्वरकों को खेत की तैयारी करते समय मिलाएं और सही से उसमें जो बीज दर है और सही समय पर बीज का बुआई करें जिससे कि हमारी फसल अच्छा उत्पादन देगी और हमें अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तो किसान भाई सही समय आ गया है, आप अच्छी तरीके से नर्सरी का बनाएं और नर्सरी पौध हमें जो है 20 से 25 दिन की जब नर्सरी पौध हो जाए तभी हमें उसकी रुपाई कर देना चाहिए।
0: अब हम बढ़ रहे हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे। बात मौसम की अगर करें तो प्रदेश में आगामी दिनों में बरसात जारी रहने की संभावना है, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बरसात होने को अनुमान है। मनो आप सबके लाने सलाह जा है कि क्षेत्रीय मौसम की चेतावनी को ध्यान से सुनत रहें और बाकी हिसाब से अपनो काम करें। मौसम के बदलाव को असर अब फसलों पर दिख रहा है, खास तौर पे देखी जाए तो सब्जी उत्पादक किसान ध्यान देवे, क्यारियों में पानी बिल्कुल भी ना रुको रहने दें। टमाटर, मिर्ची, बैगन, भिंडी, लौकी और कद्दू वर्गीय सब्जियों में पत्तियों में धब्बा बने दिखाई दें, पत्तियां मुड़ी दिखाई दें, पौधे मुरझाए भाई दिखाई दें, फसलों में छेद दिखाई दें तो बिना देरी के अपने पास के कृषि वैज्ञानिकों से मिलें या कृषि विज्ञान केंद्र में जाके जानकारी लें और तुरंत इन रोग व्याधियों को मिटावे के उपाय करें। हाँ, जा बात ध्यान रखें, जैसे ही ऐसी कोई समस्या दिखाई दे तो नीम आधारित दवाइयों को प्रयोग जरूर कर लेवे जैसे कि फिलहाल के तौर पे उन कीट और रोगों को नियंत्रित करो जा सके। चलत चलत मंडी के भाव की बात भी कर लेवे भैया, 7 सितंबर यानी कल इंदौर कृषि उपज मंडी में अनाजों के भाव जो रहे, अधिकतम भाव हम आपको बता रहे हैं। मूंग को भाव 7000 रुपया प्रति क्विंटल थो, उड़द बिकी 8196 रुपया के भाव से, हरी मटर को अधिकतम भाव रहो है 3790 रुपया, तुअर यानी अरहर को भाव अधिकतम 6695 रुपया प्रति क्विंटल, देसी चना 9000 रुपया प्रति क्विंटल बिको, डाला चना बिको 8905 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन को अधिकतम भाव 6570 रुपया और गेहूं को भाव 2771 रुपया दर्ज भाव थो, तिल को भाव 11720 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करोगो। जे थे मंडी के भाव। तो भैया जो तो रहो आज को किसान वाणी कार्यक्रम, अब हम मिलें कोई और कार्यक्रम में फिर आपसे करें ढेर सारी बातें। अब आज्ञा दो अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना को, स्वीकार करो दो हाथ जोड़े की राम राम।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है, इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए।
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता छलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। हम आज इन्हीं सब कुछ विषयों पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी। केतन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो केतन जी हमें यही बताइए कि प्रधानमंत्री की जो आज की सभा रही है और विशेष रूप से जो विभिन्न विकास परियोजनाओं का आरंभ हुआ है वह किस रूप में है और कैसे गुजरात समेत पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा?
2: प्रधानमंत्री जी ने आज गुजरात के प्रमुख दो शहर की मुलाकात लेके वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स है उनको या तो शिलान्यास किया है या तो डेडिकेट किया है नेशन को। सुबह सबसे पहले वो वडोदरा आए थे सेंट्रल गुजरात में, जहां करीबन 35,000 करोड़ से भी ज्यादा वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स का उन्होंने शिलान्यास किया या तो फिर इनोग्रेशन किया, जिसमें मेनली देखे जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स और इंडियन रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स को समावेश किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करीबन 1840 करोड़ प्रोजेक्ट्स की कीमत के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। और जो जिस प्रोजेक्ट पर सबकी नजर है वो जैसे आपने जिक्र किया कि 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के, उसका उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया
1: जी।
2: तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा जो प्रधानमंत्री का दौरा है भारत का, उसमें ये सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो 20,000 करोड़ का एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC
1: जी,
2: ये जो 3 प्रमुख उपक्रम है उसका लोकार्पण आज हुआ है।
1: यहाँ पर श्रोताओं हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही, खासतौर से रेलवे के क्षेत्र में देश ने जो प्रगति की है उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत न केवल रेलवे कोच और मेट्रो कोच बल्कि रेलवे लोकोमोटिव के लिए भी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर उभरा है। 2014 से लेकर अब तक देश में 50,000 आधुनिक रेलवे कोच बनाए गए हैं। आइए हम प्रधानमंत्री का वक्तव्य समझते हैं।
3: जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बीते एक दशक में भारत रेल कोच मेट्रो कोच बनाने का, रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक भारत ने करीब 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट नहीं बना सकती थी, 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही। करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं 2.5 लाख।
1: यहाँ पर केतन जी हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा कि रेलवे का बजट काफी बढ़ा है उससे पूरा इकोसिस्टम बदल गया है, इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए किस रूप में परिवर्तन हो रहा है।
2: देखिए प्रधानमंत्री का जो पहले विजन था कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है। वेरियस प्रोजेक्ट चाहे वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। थोड़े साल पहले बड़ौदा में ही एक बॉम्बार्डियर रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन भी उन्होंने किया था। तो आज जो बड़ौदा में हुआ है, करीबन 329 किलोमीटर का जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है, मोर देन 9,700 करोड़, उसमें बड़ौदा रतलाम का एक रेलवे लाइन है, करजन से मलसर तक का ब्रॉडगेज कन्वर्जन है और विश्वामित्री डबोई सेक्शन का एक डबलिंग रेलवे ट्रैक है, वो सब प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया और या तो इनोग्रेशन किया या तो शिलान्यास किया। लेकिन सबसे ज्यादा देखने की बात है कि मुंबई से वडोदरा, मतलब महाराष्ट्र को सेंट्रल गुजरात और सेंट्रल गुजरात से अहमदाबाद तक
1: जी,
2: वो पूरा

0: जो इंडस्ट्री कॉरिडोर है, जिसको गुजरात में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत अब तक आया करती थी वो माल परिवहन की थी, गुड्स परिवहन की।
1: जी
0: एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती थी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में आज कहा है कि एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी और गुड्स ट्रेन भी चलेगी, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए परेशानी होगी। तो पहले जितना डिस्टेंस काटने के लिए 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा लगता था, वो डिस्टेंस इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से कम होके आधे से भी कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यदि मुझे बड़ौदा से मुंबई किसी चीज को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो जो ट्रैवलिंग टाइम था, ऑपरेशन कॉस्ट थी, वो जो पहले आती थी, वो इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से काफी कम हो जाएगी। तो नो डाउट ये इसमें दो तरह से हम देख सकते हैं इस चीज को, कि एक तो जो रेलवे के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कि नई लाइन शुरू करना, नई परिवहन सेवाएं शुरू करना, तो इनसे एक तो नए रोजगार के नए अवसर तो क्रिएट होंगे, साथ में इस प्रोजेक्ट से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज जो अभी गुजरात में आ रही है, गुजरात अहमदाबाद और मुंबई के बीच का जो कॉरिडोर है,
1: जी
0: इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उस बीच में जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है, उन इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विद इन डोमेस्टिक, मतलब कंट्री में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की जरूरत, वो सुविधाएं काफी बढ़ेगी। वो सुविधाएं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन और पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से बूस्ट मिलेगा।
1: यहाँ यदि हम ये समझना चाहें तो बड़े पैमाने पर इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। किस रूप में रोजगार का परिदृश्य बदलेगा, बढ़ेगा? एक ओर कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, दूसरी ओर आम लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। थोड़ा इसको भी स्पष्ट कीजिए।
0: मतलब जिस तरह के प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक आ रहे हैं, ब्रॉड लाइन कन्वर्जन से लेके नई लाइन क्रिएट करना, तो ऑब्वियसली नए प्रोजेक्ट्स में नए लोगों की खपत होगी, नए गुड्स की खपत होगी। तो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है पूरी, एक रेलवे लाइन को डेवलप करने के लिए या कोई एक नेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए, तो ऑब्वियसली जब काम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और दूसरा इनसे क्या है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो प्रॉस्पर होगी, और यदि लोकल इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर होगी तो मेरे ख्याल से ये परिवहन की वजह से जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो बड़े प्रोजेक्ट पहले नहीं ला सकती थी, वो बड़े प्रोजेक्ट्स वो शुरू करेगी सब इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियसली किसी भी इंडस्ट्री का यदि ग्रोथ होता है, पूरे एक सेक्टर का ग्रोथ होता है, तो उसी सेक्टर में और उस इंडस्ट्री में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
1: यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के उस उद्बोधन को याद करना चाहेंगे जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगी और जिससे देश के भीतर एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। किस रूप में इसे देखते हैं कि जो नया फ्रेट कॉरिडोर बना है, साथ ही जो नई नई कह लें औद्योगिक इकाइयां आ रही हैं, उससे किस तरह से पूरे देश के लिए और विश्व के लिए आने वाले दिनों में हम सप्लाई चेन के रूप में विकसित हो सकेंगे?
0: सप्लाई चेन एसेंशियल है, और ऐसा इफेक्टिव सप्लाई चेन के लिए हमें चाहिए क्या, एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, चाहे वो
1: जी
0: रेलवे के जरिए हो या और जरिए से हो। आज जो प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न के फ्रेट कॉरिडोर का डेडिकेट किया है नेशन में, उसमें आप उसमें देखिए आप तीन सेक्शन इंक्लूड है, एक सारण से मकरपुरा मतलब बड़ौदा,
1: जी
0: एक उमरगाम से न्यू सफाले, और तीसरा न्यू सफाले से मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट। तो इस तरीके से देखिए तो सानंद यहाँ है अहमदाबाद के बगल में,
1: जी
0: वहां से लेके मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट तक जो गुड्स का परिवहन जिस गति से होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था, अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से परिवहन में काफी तेजी आएगी, क्योंकि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है तो परिवहन में तेजी आएगी। तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट मिलेगा। और दूसरा कि जिस तरह से हम पिछले भी हमने देखा है कि गुजरात में कंडक्टर इंडस्ट्रीज आ चुकी है, पूरे विश्व की नजर अभी जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है, तो उस दिशा में हमें किसी पर आयात करने के लिए निर्भर न रहना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर से लेके जो जो भी चीजें जिस पर हम दूसरे देशों पे निर्भर हुआ करते थे इंपोर्ट करने के लिए, वही चीजें हम आज डोमेस्टिकली अपने देश में बना रहे हैं, शुरू हो

0: गया है, कहीं प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ चुका है। ऑटो इंडस्ट्री में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, टेक्सटाइल तो हमारा है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर चिप बनाने से लेके। तो जो एक 2047 का एक प्रधानमंत्री ने हमें जो
1: जी
0: पूरे
1: जी
0: देश को एक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, इस विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे प्रमुख कोई चीज है तो वो है इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ जो चीज की जरूरत है वो चीज का उत्पादन भी हमारे वहाँ हो और उस चीज का बाजार भी हमारे यहाँ हो। तो ये दोनों तरीके से ये अलाइन होता है उनके विजन के साथ, कि एक तरफ यदि हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो जो उत्पादन हो रहा है उसको बाहर भेजने के लिए, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट और देश के बाहर भेजने के लिए जो सुविधा हमें डेवलप करनी चाहिए। और उसी सिलसिले में उन्होंने शिप का जिक्र किया था
1: जी
0: कि चाहे हम दरियाई रूट से एक्सपोर्ट करें या और अदर रूट से, लेकिन वो जो पोर्ट है, पोर्ट से इंटीरियर एरिया में परिवहन करने के लिए भी इफेक्टिव सुविधा की जरूरत है। तो दिस वॉज द गैप विच वी वेयर एक्सपीरियंसिंग पिछले कई सालों से, तो वो गैप आज इस प्रकार के प्रोजेक्ट की वजह से काफी कम होता जा रहा है, काफी हम उस दिशा में काफी आगे देखते जा रहे हैं।
1: यानी कुल मिलाकर हम देखें तो देश तेज गति से प्रगति कर रहा है और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। इस बदलाव को किस रूप में आंकते हैं आप?
0: निश्चित तौर से एक बदलाव लोग अभी महसूस कर रहे हैं। सी देखिए, सबसे बड़ी बात पैसेंजर के तौर में मैं बताऊं, आज हम देख रहे हैं कि कितनी सारी वंदे भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी बढ़ी है, सुविधाएं मिली है, नई नई वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है और वो डेडिकेट हो रही है। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे का जो परिश्रम है, वो ये रेलवे रिलेटेड फैसिलिटीज खड़ी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कि किसी एक ट्रेन को आप एक शहर के से दूसरे शहर को जोड़ते हैं तो इफेक्टिव कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो उस दिशा में ये काफी सिग्निफिकेंट है कि पहले रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, हमारे पास सबसे बड़ा कनेक्टिविटी पावर है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं हम ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक के जो लास्ट विलेजेस है भारत के, वो हम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। तो इस सरकार ने जो रेलवे पर फोकस किया है, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 2.75 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें 50,000 कोच अपने आप में एक माइलस्टोन है, कि जिस देश में अभी 10-15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि रेलवे कोच बनाएंगे, वहां आज हम 50,000 रेलवे कोच नए छोड़ चुके हैं।
1: जी
0: तो रेलवे में अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छी गाड़ियां देखने को मिलती है। और आज गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद से सूरत जाने के लिए, अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए आज आपके पास ट्रेन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपका समय बचाता है, आपकी एनर्जी बचाता है, और एट द सेम टाइम ये डेडिकेटेड फ्रे कॉरिडोर की वजह से जो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, उसका समय बचेगा, इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट परिवहन कर पाएंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है टूवर्ड्स 2047।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम सधे कदमों से धीरे धीरे चलकर पूरा कर रहे हैं और हम विश्वास रखते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेज गति से देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ेगा। केतन जी, आपने हमें बहुत उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए शब्बीर अहमद का लिखा और मीट ब्रॉस का संगीतबद्ध किया गीत, आवाज मीट ब्रॉस और अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड।

ए.आर. रहमान के संगीत निर्देशन में अब सुनिए इरशाद कामिल का लिखा गीत। आवाजें शिराज उपल और जसविंदर सिंह की, फिल्म का नाम रांझणा।

0: सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए सुनिए अजय अतुल के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लेखा गीत, आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम सुपर 30।

अभी आपने मिथुन के गीत संगीत निर्देशन में कबीर सिंह का गीत सुना, कबीर सिंह फिल्म का गीत सुना, आवाज अरिजीत सिंह की थी। कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता

0: ये पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
5: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ की सरकार वहाँ के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में

0: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
1: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
2: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है आपके हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाली वर्सटाइल गायिका आशा भोसले पर। आठ सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में जन्मी संगीत नाटकों के अभिनेता गायक और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री आशा को फिल्मों में गाने का पहला अवसर तब मिला जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। 1943 की ये मराठी फिल्म थी माझ बाळ। संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। हिंदी फिल्मों में आशा जी की शुरुआत 1948 के हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया के गीत से हुई। श्रोताओं, आशा भोसले के गाए हिंदी फिल्मी गीतों के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में तो सभी जानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे इस प्रतिभावान गायिका के हिंदी फिल्म संगीत के अलावा गाए लगभग सभी प्रकार के गीतों की। जी हाँ, भक्ति रचनाएं, गजल गीत, लोक गीत, कव्वाली, पॉप गीत, अन्य भाषाओं के गीत, विदेशी संगीतकारों तथा गायकों के साथ गायन और शास्त्रीय संगीत भी।

शास्त्रीय संगीत का एक मंजा हुआ कलाकार ही अपनी गायकी में इतना वैविध्य दिखा सकता है। आशा भोसले की गायकी की सफल यात्रा हिंदी और मराठी में समान रूप से जारी रही।

संत अमृत राय हो, संत जनाबाई हो, संत ज्ञानेश्वर हो या किसी और संत की रचना, आशा भोसले के भक्ति रस में डूबे सुरों से सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। मराठी भाव गीतों की दुनिया में आशा जी का नाम शीर्ष पर है। गदी माडगुड़कर, बाभ बोरकर, आरती प्रभु, शांता शेड़के, शांताराम नांदगांवकर, सुधीर मोघे और सुरेश भट्ट जैसे नामचीन कवियों की रचनाएं, जब वसंत प्रभु, दत्ता डावजेकर, सुधीर फड़के, हृदयनाथ मंगेशकर, श्रीनिवास खड़े और श्रीधर फड़के जैसे ख्यातनाम संगीतकारों की सुरावली में बंधकर आशा भोसले के कंठ से निकलती हैं, तब वो सुनने वालों के दिल में उतरकर उनके भाव विश्व को हिलाकर रख देती है।

महाराष्ट्र में संगीत प्रेमियों के मन में नाट्य संगीत का विशेष स्थान है और उसमें नाट्य गीत यदि आशा भोसले के स्वर में हो तो क्या कहने।

हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को आशा जी का स्वर मिला तो ये गीत फिल्मी हो या गैर फिल्मी अभिजात हो गए क्लासिक्स में गिने गए। जैसे जयशंकर प्रसाद की ये रचना, संगीतकार जयदेव।

कभी नेकी भी उसके जी में आ जाए है मुझसे। गालिब साहब का ये कलाम और ऐसी ही हिंदी उर्दू की अन्य रचनाएं आशा जी के स्वर में सुनकर श्रोताओं के दिलों में आज भी चैन और करार आ ही जाता है और उभरने लगती हैं यादें गजलों के उस एल्बम की जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था गुलाम अली के साथ, मिराज-ए-गजल।

चांद के साथ साथ सज जाती है आशा जी के जादुई सुरों की महफिल सामईन के जहन में आज भी उन्हीं दिनों में जाने माने गजल गायक हरिहरन के साथ आशा भोसले ने रिकॉर्ड किया था एल्बम आबशार

जी की आवाज के कायल उनकी आवाज के दीवानों को मिला था उसके बाद एक नजराना। एल्बम का नाम आपकी आशा।

आपकी आशा। इस एल्बम के सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी की कलम से उतरे थे। संगीतकार राहुल देव बर्मन। मजरू साहब का ही लिखा हुआ गाना गाकर आशा भोसले ने अपने आप को साबित किया था पॉप म्यूजिक की दुनिया में। संगीत लेस्ली लुई का। एल्बम का नाम जानम समझा करो।

80 के दशक के जाते जाते और 90 के दशक की शुरुआत में संगीत प्रेमियों में फिल्म संगीत की बनिस्बत गैर फिल्मी संगीत कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ था। गीत, गजल, इंडी पॉप और भजनों के नए नए एल्बम बाजार में आ रहे थे। इसी दौरान संगम हुआ संगीत की दुनिया के तीन महान हस्तियों का, जो फिल्मों में इससे पहले कई बार हो चुका था। जी हाँ, गुलजार, आर डी बर्मन और आशा भोसले। इस त्रिवेणी संगम से उभरा एक अनूठा अनोखा अलबेला एल्बम दिल पड़ोसी है।

पड़ोस में ही नहीं चाहने वालों के दिल में ही घर बना लिया इन गीतों ने, और ये गाने आज भी गूंज रहे हैं। गैर फिल्मी गीतों की लोकप्रियता के इस दौर में अपनी बहन गान कोकिला लता मंगेशकर और गजल नवाज जगजीत सिंह के साथ मिलकर आशा भोसले ने अपने चाहने वालों को जो तोहफा पेश किया था, उस एल्बम का नाम था दिल कहीं होश कहीं।

मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ बांग्ला भाषा में आशा भोसले के गाए गीतों का एक सफलतम करियर रहा है। आशा जी ने सबसे पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड किया था 1958 में। मन्ना डे द्वारा संगीतबद्ध इस युगल गीत में उनके साथ आवाज थी विनोद चट्टोपाध्याय की। अगले ही वर्ष 1959 में आशा भोसले ने अपना पहला पूजो गीत रिकॉर्ड किया। ये वो देवी स्तुति के गीत होते हैं श्रोताओं, जो बंगाल में नवरात्रि के समय प्रकाशित होते हैं। आर डी बर्मन ने हिंदी फिल्मों के कुछ लोकप्रिय गीतों को बांग्ला में रिकॉर्ड करवाया था। ये गीत हैं।

कानों में शहद घोलती इस आवाज में किसी भी भाषा के गीत हों, सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्मी गीतों का आज जिक्र ही नहीं होगा। आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मी गीत अनसुने हैं या बहुत कम सुने जाते हैं, जैसे फिल्म अनकही का ये गाना।

सन 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेट ली के साथ आशा भोसले ने एल्बम रिकॉर्ड किया था हाँ मैं तुम्हारा हूँ।

1980 के दशक के मध्य में बॉय जॉर्ज और स्टीफन ल्यूसकॉम के साथ आशा भोसले ने गीत गाए हैं। 1997 की बात है, युवकों के एक संगीत समूह कोड रेड के साथ मिलकर आशा जी ने एक प्रेम गीत रिकॉर्ड किया था अपनी उम्र के 64वें साल में। जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले ने हमेशा संगीत को अहमियत दी। संगीत के क्षेत्र में होने वाले प्रयोग उनके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर संगीतकार नई पीढ़ी के हों, भारत के हों या विदेश के, गीत किसी और भाषा का हो, आशा जी ने हर चुनौती को स्वीकार किया और जब जब जिस गीत को गाया अपने स्वर्णिम सुरों से उस गीत को सुशोभित कर दिया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा जी को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण प्रदान किया जा चुका है। भारतीय सिनेमा को योगदान के लिए आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग अनुराग और वैराग्य का सुखद संयोग जहां है वो है आशा भोसले का स्व अलंकृत स्वर। हम सब की प्यारी आशा ताई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं के गाए इस गीत के द्वारा देते हैं अनंत शुभकामनाएं।

0: आशा भोसले पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आलेख शोध और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: लाख कसमें दी, लालच दिए, पर जाने वाले लौटे नहीं। सिर्फ राहों पे उड़ते हुए सन्नाटों का गुबार छोड़ गए। कब तक कोई सन्नाटे फांकता रहे, जिंदगी तो चलती।

एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे। जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है, यह भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं, फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मिसरा गालिब का है और कैफियत हर एक की अपनी अपनी। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये फुर्सत रुकी हुई नहीं है, कोई ठहरी हुई जमी हुई चीज नहीं, एक जुनबिश है, एक हरकत करती हुई कैफियत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: ये सब शायद शायर के खाम ख्याली हो, पता नहीं कैसी कैसी परछाइयों को गिरह लगा के बांध देना चाहता है। सब जमा करता है और कुछ हाथ नहीं आता। ये सब के सब सरकते हुए साए हैं, इनमें दर्द भी है, रस भी। अजीब चीज है ये शायर, चाहे जितना उंडेलता रहे खाली नहीं होता।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी। कभी पहन लेता हूं, कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं। जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा। जो याद रहेगा सिर्फ

किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए। पानी के छपाकों की आवाज भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। टूट गए, नाराज हो गए, हाथ से अंगूठी उतारी, वापस कर दी, बाहों के कंगन उतारे और सात फेरों समेत लौटा दिए। लेकिन वो बाकी जेवर जो दिल में रख लिए उनका क्या होगा।

यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

कुछ साए कुछ परछाइयां, कुछ चाहत के सजदे, कुछ बहते बादलों पे रखी उम्मीदें बरसती रहीं तरसती रहीं, चांद आसमान में जड़े सुराख की तरह झांकता रहा और रात किसी अंधे कुएं की तरह मुंह खोले हांफती रही। रास्ते पांव तले से निकलते रहे, न रुके न थमे, न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश में है। जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का जुड़वा उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर अभी तक कुछ बीन रहा है, कुछ ढूंढ रहा है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक

0: की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी प्लस से बढ़ाकर ए माइनस कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global FinTech Fest in Mumbai this evening.
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The four-day Global FinTech Fest 2026 is being held in Mumbai from today till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today.